टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CTET के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि ये जो एक अच्छा टीचर होता है ना, वो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाता बल्कि बच्चों को नई दिशा देता है, बेहतर भविष्य भी देता है। और CTET ऐसे ही शिक्षकों को, योग्य शिक्षकों को चुनने में मदद करती है ताकि हम अपने देश का भविष्य बेहतर कर पाएं। तो अगर आप भी इसी का इंतजार कर रहे थे टीचर टेस्ट का, तो आपको बता दें कि सितंबर 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आवेदन प्रक्रिया 11 मई से शुरू हो गई है, 10 जून तक फॉर्म भरे जा सकते हैं, 6 सितंबर को परीक्षा होगी ऐसा कहा जा रहा है, पर जरूरत पड़ने पर 5 सितंबर को भी आयोजित की जा सकती है। इस बार एक बड़ा बदलाव यह है कि एप्लीकेंट अपने पसंद का शहर नहीं चुन पाएंगे, परीक्षा शहर। तो CBSE की तरफ से परीक्षा शहर और सेंटर रैंडम बेसिस पे दिया जाएगा, शहर बदलने की भी कोई रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की जाएगी, तो इसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहिएगा। फिलहाल अगर फॉर्म भरते टाइम कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए 15 से 18 जून तक करेक्शन करने का मौका मिलेगा और रिजल्ट जो है वो अक्टूबर के अंत तक आने की संभावना है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो वेबसाइट नोट कर लीजिए, CTET.NIC.IN, और दूसरी वेबसाइट है CBSE.GOV.IN के जरिए आप यहां अप्लाई कर सकते हैं और अपने सपनों की मंजिल तक पहुंच सकते हैं।

तो ऐसे ही प्यारे प्यारे गीतों के साथ छोड़े जा रही हूँ आपको. दिन भर गाते कर रहिएगा, गुनगुनाते रहिएगा इन गीतों को और मुझे याद करते रहिएगा. फिलहाल म्यूजिकल दिल्ली का सफर जो है वो जारी रहेगा नाज के साथ. फिलहाल मैं चलती हूँ और बीच में चलिए सुन लेते हैं समाचार FM गोल्ड पर.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बैठ गए। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनीसामी के नेतृत्व वाली गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना।

0: अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीबी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह 5वां कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कारपूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लेटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कल हैदराबाद स्थित स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन में फील द जेल कार्यक्रम और जेल संग्रह का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने कहा कि जेलों को सुधार केंद्रों में बदला जाना चाहिए। जेल संग्रहालय में तेलंगाना की जेलों के इतिहास, निजाम काल की वस्तुओं और नागार्जुन सागर बांध के निर्माण में कैदियों की भूमिका को दर्शाया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बीच कल रद्द कर दी गई। सरकार ने सीबीआई को अनियमितताओं की व्यापक जांच के निर्देश दिए हैं। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून आने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर फैला हुआ था। अगले 24 घंटे में इसके और अधिक प्रभावी होने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

का FM गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और पक्की वाली दोस्त नाज लेकर हाजिर हूं म्यूजिकल दिल लगी जहां ढेर सारी बातों के बीच माहौल होगा एकदम म्यूजिकल। तो जुड़े रहेंगे मेरे साथ और एंजॉय करेंगे फिलहाल प्रोग्राम का ये पहला सॉन्ग और फिर जल्दी से वापस लौट कर भी आएंगे क्योंकि इस ट्रैक के उस पार है आपके लिए आज का सवाल जिसका जवाब भी तो आप देंगे।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड विश यू अ हैप्पी वाली मॉर्निंग। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली।

बहस, इख्तलाफात या डिसएग्रीमेंट्स इस दुनिया के हर रिश्ते में होते हैं, है ना? गलत फहमियां भी हो जाती हैं, कभी कभी मन भर जाता है, एंड इट्स कंप्लीटली नॉर्मल। लेकिन जो लोग सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, वो छोड़ने की नहीं, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट होता है तो साथ निभाने का इरादा, जैसे आपका और हमारा। 8 जून 1936 से शुरू हुआ

आकाशवाणी का ये सफर 90 साल का होने जा रहा है। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का दिया नाम आकाशवाणी, यानी आकाश, आसमान से आती वाणी, भारत की 98% आबादी तक पहुंच चुकी है, क्योंकि ये सिर्फ कुछ बोलियों या भाषाओं तक सिमटी हुई नहीं है, बल्कि इसमें शामिल है 23 भाषाएं और 146 बोलियां। जी हाँ, और पूरे देश की आवाज बनने तक के इस सफर में हमें सुन रहे हर लिसनर का एक हिस्सा है, और एक बड़ा वाला थैंक यू भी बनता है हमारे साथ जुड़ने और हमें कभी न छोड़ने के लिए। फिलहाल म्यूजिकल दिल्लगी में पूछ रही हूं आपसे आज का सवाल, जिसके जवाब में आपको लिखकर भेजना है या फिर भेज सकते हैं एक से ज्यादा भी आकाशवाणी के सबसे पॉपुलर यानी सबसे मशहूर रूरल यानी कि ग्रामीण अंचल से जुड़े प्रोग्राम या फिर प्रोग्राम्स के नाम। इसके साथ ही आपका पर्सनल फेवरेट प्रोग्राम कौन सा है ये भी जरूर बताइएगा, कहां और कैसे ये भी याद दिला देती हूं। FM Gold AIR Delhi@gmail.com पर करेंगे ईमेल या फिर व्हाट्सएप मैसेज आप भेजेंगे 9868868753 पर। और मैं क्या करूंगी, आपका बढ़ाऊंगी थोड़ा सा ज्ञानकोश आज के दिन के बारे में, और फिर प्रोग्राम के एंड में शामिल करूंगी वो सभी नाम जिन्होंने भेजा होगा आज के सवाल का जवाब। साथ ही आप में से किसी एक लिसनर से करूंगी गपशप फोन लाइन पर। रिक्वेस्ट आपसे बस इतनी है कि सवाल का जवाब भेजने के बाद फोन को कहीं साइड में नहीं रखना और ना ही बिजी रखना है, ताकि मैं जब करूं आपको कॉल तो जल्दी से हो जाए हमारी टॉक।

और चलिए, जब साथ निभाने का वादा कर ही लिया है तो अब नहीं गवाऊंगी वक्त ज्यादा और आपको बताऊंगी कि क्यों आज की तारीख यानी 13 मई को आपको याद रखना चाहिए। भारत के डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक इतिहास में आज का दिन एक खास मुकाम रखता है, क्योंकि आज ही के दिन साल 1952 में आजाद भारत का पहला संसद सत्र आयोजित किया गया था। इससे पहले 3 अप्रैल 1953 को पहली बार उच्च सदन यानी राज्यसभा का गठन हुआ था और फिर कुछ दिनों के बाद ही 17 अप्रैल 1953 को ही लोकसभा का गठन किया गया था। और इसके बाद, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 13 मई 1952 वो तारीख थी जब स्वतंत्र भारत की संसदीय व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत हुई थी। और भी बहुत सी खास बातें हैं मेरे पास आपको बताने के लिए, जिन्हें मैं बताऊंगी और आप सुनेंगे जरूर, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन उससे पहले एक छोटा वक्फा, वक्फा माने ब्रेक, और तब तक आप सुनिए आशा जी की आवाज में खतूबा।

अच्छा वैसे खतूबा का मतलब यानी मीनिंग आपको पता है? मुझे भी नहीं पता था, इसीलिए मैंने अपने साथ साथ इंटरनेट को लगाया काम पर और कई घंटों की मेहनत के बाद मुझे पता चला कि इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता है। जी हाँ, खतूबा ये खास शब्द कलम के जादूगर आनंद बख्शी साहब ने गढ़ा था पंचमदा के लिए और फिल्म थी अली बाबा 40 चोर। और कमाल देखिए, इस बेमतलब से शब्द ने इस गाने को कितना गहरा असर दे दिया जो आज तक कम नहीं हुआ। और वैसे हुआ तो कम नहीं है आपका जोश भी, क्योंकि जिस तरह से आप सभी भेज रहे हैं आज के सवाल का जवाब, मुझे लग रहा है डर कि इतने सारे नामों में से कहीं मुझसे कोई नाम छूट गया तो आप नाराज हो जाएंगे। हो जाएंगे क्या, सच बताइए। अभी सुनिए ये अगला ट्रैक, तब तक मैं आपकी नाराजगी से बचने की पुरजोर कोशिश करती हूं।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

आपको बताना है आकाशवाणी के पॉपुलर रूरल प्रोग्राम्स के नाम, साथ ही आपका फेवरेट कौन सा है ये भी लिख भेजिएगा fmgoldairdelhi@gmail.com पर, या फिर अगर व्हाट्सएप खुला हुआ है फोन में तो लिख भेजिए 9868687 पर अपना मैसेज। और फिलहाल सुनिए कि और क्या कुछ खास हुआ था आज के दिन यानी 13 मई को। तो साल था वो 2000, जब एक और जीत हुई थी हमारी, जब लारा दत्ता मिस यूनिवर्स चुनी गई थी। साइप्रस के निकोसिया शहर में हुआ था फाइनल राउंड, जिसमें 9.99 का स्कोर लारा दत्ता जी ने हासिल किया था, जो मिस यूनिवर्स के इतिहास का अब तक का सबसे ज्यादा इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत स्कोर है। और इससे पहले साल 1994 में भारत की ओर से ही सुष्मिता सेन ने यह खिताब अपने नाम किया था। सच में बेटियों के पंखों को अगर मजबूती दी जाए तो वो कहां तक उड़ सकती हैं और क्या कुछ करके दिखा सकती हैं, इस बात का ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, नहीं? और भारत की बेटियां यूं ही उड़ान भरती रहें और देश का नाम रोशन करती रहें, इसके लिए जरूरी है उनका बचना और फिर पढ़ना भी, जिसे इसी बात को सुनिश्चित करती भारत सरकार की राष्ट्रीय पहल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का यहां पर जिक्र करने वाली हूं, जिसकी शुरुआत हुई थी साल 2015 में और तारीख थी 22 जनवरी। बेटियों को लेकर समाज की पुरानी मानसिकता बदले और उन्हें भी बराबरी का हर मौका मिले, इस ओर ये एक सराहनीय कदम है जिसमें हम सबको अपनी हिस्सेदारी और जिम्मेदारी निभानी है और अपनी बेटियों को न सिर्फ उड़ने देना है बल्कि उनका साथ भी निभाना है जहां तक उन्हें जरूरत हो।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: म्यूजिकल दिल लगी चल रहा है प्रोग्राम, जहां मैं यानी नाज हूं आपके साथ। घड़ी ने बजा दिए हैं 9:38 और 28 सेकंड्स भी, और आपको याद दिला दूं कि सवाल भी पूछा है मैंने आपसे।

और आज के दिन यानी 13 मई से जुड़ी कुछ और खास बातें अब जान लीजिए, जिनमें शामिल है साल 1905 भी, जब भारत के पांचवें राष्ट्रपति रहे फखरुद्दीन अली अहमद साहब का जन्म पुरानी दिल्ली के हौज काजी इलाके में हुआ था। 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक देश के सर्वोच्च यानी राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली और इस पद पर रहते हुए ही दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका आकस्मिक निधन हो गया था। और इन्हीं के साथ आज के दिन को हमें याद रखना चाहिए भारतीय अंग्रेजी साहित्य के महान और मशहूर उपन्यासकारों में से एक आर के नारायण साहब के लिए भी, क्योंकि आज उनका स्मृति दिवस है। आज ही के दिन साल 2001 में उन्होंने संसार को अलविदा कह दिया था। इनकी प्रमुख रचनाओं में शामिल है द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर, द गाइड और हम सबकी जानी मानी कहानी मालगुड़ी डेज। उन्हीं का लिखा ये शॉर्ट स्टोरीज यानी लघु कहानियों का एक मशहूर संग्रह है। और चलिए अब सुन लेते हैं अगला गाना, क्योंकि इसके बाद मुझे यानी नाज को आपको आज के सवाल का जवाब भी तो है बताना।

0: किसानों को जागरूक करने के मामले में एक महत्वपूर्ण कड़ी रहा है, जिसका जरिया रहे हैं समय समय पर आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले अलग अलग कार्यक्रम। बात अगर पॉपुलैरिटी की करें तो उसकी भी कोई सीमा नहीं रही है, फिर चाहे वो किसान वाणी हो या फिर चौपाल, फार्म एंड होम प्रोग्राम हो या फिर रेडियो रूरल फोरम। आकाशवाणी के हर प्रोग्राम को आप सभी लिसनर्स ने खूब सराहा और अपना ढेर सारा प्यार दिया। तो चलिए मैं भी एक छोटी सी कोशिश कर लेती हूँ आप सबके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने की। शामिल करती हूँ प्रोग्राम में उन सभी लिसनर्स के नाम जिन्होंने बिना देरी किए आज के सवाल का दिया सही जवाब। तो नवीन भाटिया जी का सबसे पहले आया हर रोज की तरह सही जवाब मोतीनगर नई दिल्ली से। अनु बरजातिया जी मुंबई से बिल्कुल सही जवाब के साथ इन्होंने मैसेज किया था। कैलाश शर्मा गुरुग्राम से, मनीषा साखर दांडे जबलपुर मध्य प्रदेश से, आशीष गायकर मुंबई से, कृष्ण कुमार गुप्ता भटीपुरा महोबा यूपी से, संतोष सक्सेना मुंबई से, हेमंत साखर दांडे जबलपुर मध्य प्रदेश, भाभानी शंकर चेन्नई, वसंती कटारिया, ओमकार नवालकर तिलक राज अरोड़ा खुर्जा यूपी से, पंकज मोहोड़ अमरावती से बिल्कुल सही जवाब भेजने वाले लिसनर्स में शामिल हैं। और बात तो ये भी हुई थी कि आप में से एक लिसनर जुड़ेंगे हमारे साथ फोन लाइन पर, तो भाई जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अनु बरजातिया जी का, मुंबई से सीधे जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। गुड मॉर्निंग मैम।
1: गुड मॉर्निंग नाथ जी, कैसी हैं?
0: मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ और आपसे बात करने के बाद तो मेरी तबीयत और भी बढ़िया होने वाली है। फिलहाल आप बताइए आप कैसा फील कर रही हैं? और जी
1: हाँ बोलिए बोलिए।
0: जी जी बोलिए आप।
1: मैं आई एम सो हैप्पी। और आप प्रोग्राम पूछ रही हैं कृषि जगत का, तो अपने ही चैनल से एक 2:30 to 3 o'clock को PM4 प्रोग्राम आता है कृषि से संबंधित। बहुत प्यारा प्रोग्राम है, मैं रेगुलरली सुनती हूँ उसको।
0: ओके और इसके अलावा और कौन कौन से प्रोग्राम पसंद करते हैं? क्या रिश्ता कितना जी कितना लंबा और कितना गहरा रिश्ता है आकाशवाणी के साथ, ये अब आपसे जानना चाहिए।
1: मैं वैसे एक्चुअल में जो है ना 2008 से जुड़ी हूँ।
0: okay.
1: इसके पहले जो है मेरा पूरा समय जो है एजुकेशन वगैरह में बीता है
0: जी.
1: तो मैं इसके बाद में बिल्कुल रेगुलर रही हूँ। और साथ में जो है यहाँ से जो भी गोल्ड के प्रोग्राम आते हैं सब बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं अलॉन्ग विथ ब्यूटिफुल सॉन्ग्स।
0: ओके और बताइए ब्रेकफास्ट कर लिया आपने? ब्रेकफास्ट कर लिया?
1: जी ब्रेकफास्ट कर लिया, मैं स्प्राउट्स खाती हूँ।
0: ओके वेरी गुड। तो बताइए अनु जी कैसे दिन शुरू होता है और FM गोल्ड आपका साथी किस तरह से बन जाता है, थोड़ा सा आपकी दिनचर्या के बारे में भी जानना चाहिए।
1: मैं आपको बताती हूँ कि मेरे को थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है बिकॉज ऑफ माय सन, ही इज वर्किंग। तो मुझे क्या होता है कि उसके लिए सारी तैयारी करनी पड़ती है और उसको मेरी तैयारी से ही बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। उसके बाद ही मेरी दिनचर्या मतलब रेगुलर जो मैं करना चाहती हूँ वो करती हूँ, पूरा घर का काम खुद करती हूँ, 2 o'clock तक बिल्कुल पैक रहती हूँ। उसके बाद मुझे फुर्सत मिलती है फिर मैं, और जब मैं किचन में काम करती हूँ तो बराबर रेडियो और गोल्ड सुनती रहती हूँ। और अगर जहाँ कहीं आंसर करना होता है तो बीच में रोक देती हूँ, पर कई बार रोटी भी जल जाती है।
0: जी बिल्कुल, ये बात तो मैं जानती हूँ। प्रोग्राम चाहे कोई भी हो आपका मैसेज और आपका जवाब आना ही आना है और इस बात के लिए तारीफ तो बनती ही है अनु जी। अच्छा ये
1: बताइए आपने कमेंट है, आप बहुत इंटेलिजेंट तो बहुत कॉन्फिडेंटली प्रोग्राम करती हो और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन लाती हो, उसके लिए वेरी वेरी थैंक्स, एक बड़ा वाला थैंक्स।
0: ओ थैंक यू सो मच अनु मैम, और इतनी तारीफ करने के बाद तो अब जोश मेरा और भी ज्यादा बढ़ना ही है और कोशिश करूंगी कि इसी तरह से प्रोग्राम्स पेश करती रहूं और आप लिसनर्स को सभी को खुश करती रहूं। अब
1: बहुत आज की भी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी थी और पहले भी आपने बहुत अच्छी दी थी और मैंने इसको मेंशन करके आपने फीडबैक मांगा था, मैंने डाल भी दिया था वो फीडबैक।
0: ओके थैंक यू सो मच मैम। अब चूंकि घड़ी बहुत तेजी से भाग रही है तो अब यही पूछूंगी कि कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: माय डैड्स फेवरेट सॉन्ग सरस्वती चंद्र का फूल तुम्हें भेजा है खत में। और नाग मैडम सुनिए, अभी आपने गाना चलाया था इट्स माय फेवरेट सॉन्ग, जूही की गली मेरी लाड़ली, इट्स माय फेवरेट सॉन्ग।
0: ओके वेरी नाइस, थैंक यू सो मच अनु जी, आपका दिन शुभ हो, जो कर रहे हैं बहुत अच्छे से करते रहें, और सबसे बड़ी बात इसी तरह से जैसे आप है ना खुश दिल रहें हमेशा।

मुस्कुराते रहें और सब में मुस्कुराहट बांटते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, सेम टू यू मैम, थैंक यू सो मच। और अब आप सुनेंगे आपका फेवरेट सॉन्ग भी, तो रेडियो बंद नहीं करना है। ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच। तो ये थी अनु जी मुंबई से हमारे साथ जुड़ी, और बिल्कुल सही जवाब इन्होंने पहले भेजा और फिर इनसे हुई ढेर सारी बातें। और दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया, वक्त बहुत तेजी से भाग रहा है, तो अब प्ले करूं मैं अनु जी का फेवरेट सॉन्ग। उससे पहले आपको याद दिला दूं कि एफएम गोल्ड पर एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन का सिलसिला थमेगा नहीं। इस गाने के उस पार आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में देश और दुनिया से जुड़े समाचार। उसके बाद ठीक 10:30 बजे यानी 10:30 पर मुझसे फिर मिलना है आपको। प्रोग्राम कौन सा होगा? दिल का मेलबॉक्स, ये तो आप जानते ही हैं। चलिए अभी के लिए ले रही हूं फिर से एक वक्फा यानी एक छोटा सा ब्रेक, और सुनवा रही हूं ये खूबसूरत गाना अनु जी की पसंद से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी ने आज पुद्दुचेरी की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित समारोह में पुद्दुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में ये पांचवा कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुद्दुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीति में नाटकीय मोड़ आया, जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डपड्डी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बीच कल रद्द कर दी गई थी। सरकार ने सीबीआई को अनियमितताओं की व्यापक जांच के निर्देश दिए हैं। वैश्विक ईंधन में कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के बेड़े में 50% वाहनों की कमी का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या को कम कर दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावित हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लेटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी।

विदेश मंत्रालय ने कैलाश मानसरोवर यात्रा में भाग लेने के इच्छुक लोगों से 19 मई से पहले आवेदन करने का आग्रह किया है। इस यात्रा के लिए पंजीकरण जल्द ही बंद होने वाले हैं। इच्छुक आवेदक आधिकारिक वेबसाइट kmy.gov.in पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और पंजीकरण करा सकते हैं। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतीक यादव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक शुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों से देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: in January elections. One of Africa's longest serving leaders, Museveni, took the oath of office yesterday at an event at Kololo Independence Grounds in Uganda's capital, Kampala, while being cheered by thousands of attendees. The Meteorological Department forecasts more spells of rain and thunder showers across most parts of Jammu and Kashmir, while warning of hailstorms, lightning and gusty winds at isolated places during the next 24 hours. Generally cloudy weather with spells of rain and thunder showers was witnessed across several areas of Kashmir and Jammu divisions. There is a possibility of hailstorms, thunder and gusty winds with speeds of 50 to 60 kilometers per hour at a few places in both divisions. In IPL cricket, Gujarat Titans defeated Sunrisers Hyderabad by 82 runs to take the top position in the points table with a compelling all-round show in Ahmedabad last night. Chasing the target of 169 runs, Sunrisers Hyderabad were bundled out for just 86 runs in 14.5 overs. In today's fixture, Royal Challengers Bengaluru will take on Kolkata Knight Riders in Raipur. The match will begin at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के कल से नई दिल्ली में होने वाले सम्मेलन की तैयारियां पूरी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 3 दिन के चीन दौरे पर। रूस ने समरथ अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। युगांडा में युवेरी मुस्मेनी ने लगातार 7वीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली। और बैडमिंटन में बैंकॉक में थाईलैंड ओपन में कई भारतीय खिलाड़ियों के महत्वपूर्ण मुकाबले आज। अब समाचार विस्तार से। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडल भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक से पहले डॉ जयशंकर आज नई दिल्ली में कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। वे आज चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैकेना से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरा वियेरा के साथ भी वे द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। शाम को डॉ जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दों पर हमारी बातचीत होगी।
1: विदेश मंत्रालय ने कैलाश मानसरोवर यात्रा में भाग लेने इच्छुक लोगों से 19 मई से पहले आवेदन करने का आग्रह किया है। इस यात्रा के पंजीकरण जल्द ही बंद होने वाले हैं। इच्छुक आवेदक आधिकारिक वेबसाइट kmy.gov.in के माध्यम से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और पंजीकरण करा सकते हैं। भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष ने 2033 तक के लिए नया 8 वर्षीय देश रणनीतिक अवसर कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण आय बढ़ाना, लोगों की क्षमता मजबूत करना और देशभर में टिकाऊ आजीविका के अवसरों का विस्तार करना है। इस अवसर पर आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर ने बताया कि भारत और कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष की साझेदारी केवल लंबे समय से ही नहीं बल्कि रणनीतिक तालमेल के लिए भी जानी जाती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। वे कल से पेइचिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ शिखर सम्मेलन करेंगे। वे द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख पहलुओं पर चर्चा करेंगे जिसमें व्यापार पर विशेष बल दिए जाने की संभावना है।

ये शी जिनफिंग के साथ ट्रंप की सातवीं आमने सामने की बातचीत होगी और 2017 के बाद किसी अमरीका के राष्ट्रपति की चीन की पहली यात्रा होगी। अपनी यात्रा से पहले ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि इससे आने वाले दशकों में दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध स्थापित करने में मदद मिलेगी। अमरीका के राष्ट्रपति के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और युद्ध मंत्री पीट हेक्सेथ सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से फोन पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने रणनीतिक सहयोग और आपसी हितों के समर्थन में संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में नवीनतम घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। उन्होंने क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तथा स्थिरता पर गंभीर प्रभावों के साथ साथ उनसे निपटने के लिए चल रहे प्रयासों की भी समीक्षा की। उधर पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच कतर ने कल ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर से संबद्ध एक सशस्त्र समूह की बिबुयान द्वीप में घुसपैठ की निंदा की। अमेरिका में उपभोक्ता महंगाई दर अप्रैल में पिछले तीन वर्षों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान युद्ध से उत्पन्न हुए आर्थिक प्रभाव को इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। अमेरिकी श्रम सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI अप्रैल में सालाना आधार पर बढ़कर 3.8% हो गया, जबकि मार्च में यह 3.3% था। अमेरिका इसराइल और ईरान के बीच संघर्ष के कारण फरवरी के अंत से पश्चिम एशिया में हिंसा बढ़ गई है। ईरान की जवाबी कार्रवाई से अमेरिका के क्षेत्रीय सहयोगी प्रभावित हुए हैं और होर्मुज जलडमरू मध्य लगभग बाधित हो गया है। सामान्य परिस्थितियों में दुनिया का लगभग 20% तेल और प्राकृतिक गैस इसी जलमार्ग से गुजरता है। इस रुकावट के कारण दुनिया भर में ऊर्जा कीमतों में भी तेज बढ़ोतरी हुई है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। रूस ने समृद्ध अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सफल परीक्षण पर रूसी सेना को बधाई दी। उन्होंने कहा कि समृद्ध दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल प्रणालियों में से एक है और इसकी क्षमता सोवियत दौर की वोयोमोदा मिसाइल प्रणाली के बराबर है। श्री पुतिन ने कहा कि समृद्ध मिसाइल प्रणाली को इस वर्ष के अंत तक तैनात कर दिया जाएगा। रूस की सामरिक मिसाइल सेना के कमांडर सर्गेई काराकाइव ने कहा है कि परीक्षण ने मिसाइल प्रणाली की क्षमता और उसकी तकनीकी मजबूती को साबित किया है। युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में ली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने सातवें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसेवेनी पिछले 40 वर्ष से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसेवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में शपथ ली। चुनावों में मुसेवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए थे। वहीं विपक्षी नेता बोबी वाइन को 25% वोट मिले। ब्रिटेन में स्थानीय चुनावों में लेबर पार्टी की हार के बाद प्रधानमंत्री की स्टामर पर पद छोड़ने का दबाव बढ़ता जा रहा है। उनके मंत्रिमंडल में आवास समुदाय और स्थानीय सरकार मंत्री मियाट्टा फाहुनबुले ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने श्री स्टामर से देश हित में सही कदम उठाते हुए पद छोड़ने की समय सीमा तय करने का भी आग्रह किया। उधर श्री स्टामर ने पद छोड़ने की बढ़ती मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए अपने आलोचकों को गलत साबित करने का संकल्प लिया। इससे पहले खबरों में कहा गया था कि इंग्लैंड और वेल्स में हाल में हुए स्थानीय चुनावों में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद 60 से अधिक लेबर सांसद श्री स्टामक से पद छोड़ने का आग्रह कर रहे थे। कई लेबर सांसदों ने सार्वजनिक और निजी तौर पर चिंता व्यक्त की है और श्री स्टामक का नेतृत्व अगले आम चुनाव से पहले पार्टी की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। इसराइल में अमेरिका के राजदूत माइक हकाबी ने कहा है कि ईरान युद्ध के दौरान इसराइल ने आयरन डोम मिसाइल रोधी बैटरी और उन्हें संचालित करने के लिए कर्मियों को संयुक्त अरब अमीरात भेजा था। उनके इस बयान से इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों पर रेखांकित होते हैं। दोनों ही देश लंबे समय से ईरान को संदेह की नजर से देख रहे थे और संघर्ष में नाजुक युद्ध विराम अभी भी कायम है। नेपाल और भारत के बीच आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता समझौते को नेपाल के प्रतिनिधि सभा में पेश किया गया। नेपाल के विधि न्याय और संसदीय कार्य मंत्री सोभिता गौतम ने सदन में यह समझौता प्रस्तुत किया। ये समझौता इस वर्ष फरवरी में भारत और नेपाल के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। श्री गौतम ने कहा कि समझौते का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच आपराधिक मामलों की जांच, अभियोजन और न्यायिक प्रक्रिया को कानूनी रूप से अधिक प्रभावी और आसान बनाना है। पश्चिमी और दक्षिणी श्रीलंका में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने द्वीप के पास बने निम्न दबाव से मौसम बिगड़ने की आशंका व्यक्त की।

0: है। मौसम विभाग ने कहा है कि बुधवार को पश्चिमी और सबरागुमा प्रांत में 200 किलोमीटर से अधिक बारिश होने की संभावना है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन में आज से भारतीय दल सिंगल्स वर्ग के मुकाबले खेलेगा। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा थाईलैंड की पोनपावी चोचुवोंग के साथ खेलेंगी। वहीं देविका सिहा का सामना जापान की खिलाड़ी से होगा। तारा शर्मा का मुकाबला जापान की हीना केची और ईशारानी बरुआ का मुकाबला इंडोनेशिया की थालिया रोसियाना वरियानवान से होगा। भारत ने थाईलैंड में आयोजित BWF सुपर 500 टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए 27 सदस्यीय दल भेजा है। उज़्बेकिस्तान में आयोजित एशिया अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के कल से नई दिल्ली में होने वाले सम्मेलन की तैयारियां पूरी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 3 दिन के चीन दौरे पर। रूस ने सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। युगांडा में युवेरी मुस्मेनी ने लगातार 7वीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली। और बैडमिंटन में बैंकॉक में थाईलैंड ओपन में कई भारतीय खिलाड़ियों के महत्वपूर्ण मुकाबले आज। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. Stage set for BRICS foreign ministers meeting in New Delhi beginning tomorrow. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to exchange views on global and regional issues with his counterparts of BRICS nations today. US President Donald Trump embarks on a 3-day visit to China. Russia successfully tests Sarmat intercontinental ballistic missile. Yoweri Museveni sworn in as Uganda's president for record 7th term. And in badminton, Indian shuttlers to play crucial matches at Thailand Open in Bangkok. And now the news in detail. India will be hosting a 2-day BRICS foreign ministers meeting from tomorrow. The meeting will be chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar. BRICS foreign ministers and heads of delegation from member and partner countries will participate in the meeting. They will also call on Prime Minister Narendra Modi. During the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. Ahead of the meeting, Dr. Jayashankar will today hold several bilateral meetings in New Delhi. The minister will meet his Chilean counterpart, Francisco Perez McKenna, this morning and will hold bilateral talks. Later in the afternoon, he is also scheduled to hold bilateral talks with the foreign ministers of South Africa, Ronald Lamola, and Brazilian Foreign Minister Mauro Vieira. Later in the evening, Dr. Jayashankar will also meet his Russian counterpart, Sergei Lavrov. Prime Minister Narendra Modi today recalled the nuclear tests conducted by India on this day in 1998. Sharing Sanskrit Subhashitam in a social media post, the Prime Minister said that the nuclear tests revealed the unwavering resolve of the country. Mr. Modi said that after the tests, the entire world brought pressure to bear on India, but the country demonstrated that no power can bend India. The Ministry of External Affairs has urged people interested in undertaking the Kailash Mansarovar Yatra to apply before the 19th of this month, as registrations will close soon. Applicants can get further details and register through the official website kmy.gov.in. In Jammu and Kashmir, army foiled an infiltration attempt along the line of control in Poonch district yesterday, killing one terrorist in the Krishna Ghati sector. Our correspondent reports that the alert troops detected suspicious movement nearly 300 meters inside the Indian side of the LOC in the Krishna Ghati sector at around 4 p.m. after receiving specific surveillance inputs. The troops immediately engaged the infiltrator, successfully thwarting the infiltration attempt and preventing any breach along the LOC. The army said one terrorist has been neutralized. U.S. President Donald Trump has embarked on a highly anticipated 3-day visit to China. He will hold a summit with Chinese President Xi Jinping in Beijing from tomorrow. He is expected to hold talks with Chinese President Xi Jinping

नमस्कार, ट्यून किया है आपने आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रोग्राम शुरू हो चुका है दिल का मेल बॉक्स, जहां मैं यानी नाज आ गई हूं आपसे बातें करने और आपसे सीधे जुड़ने भी ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए। fmgoldair@delhi.gmail.com पर ईमेल करेंगे या फिर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे आप 9868868753 पर। अपना नाम, कहां से लिख रहे हैं और कौन सा गीत सुनना चाहते हैं, ये तो आपको लिखना ही है, साथ में कुछ शेरो शायरी हो जाए या फिर कुछ भी ऐसा जो दिल छू जाए, तो बस बात बन जाए। और इसके साथ ही टेस्ट होगी आपकी फिल्मी नॉलेज भी, क्योंकि मैं एक बार फिर लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक खूबसूरत सा म्यूजिक पीस, जिसे प्रोग्राम के बीच बीच में आप सुनते रहेंगे और मुझे बताएंगे कि ये म्यूजिक पीस किस सॉन्ग का हिस्सा है, या फिर आप इसे गाने का प्रिल्यूड भी कह सकते हैं, मतलब गाने का शुरुआती हिस्सा। तो ध्यान से सुनिए आज का वो म्यूजिक पीस। एक बार और सुनिए। तो अगर पहचान लिया है गाना, तो मत कीजिए देर और जल्दी से लिख भेजिए गीत के बोल, और फिलहाल एंजॉय कीजिए ये मस्ती भरा गीत मेरी पसंद।

आपकी दोस्ती ने हमें जीना सिखा दिया, रोते हुए इस दिल को हंसना सिखा दिया। कर्जदार रहेंगे हम उस खुदा के जिसने आप जैसे दोस्त से हमें मिला दिया। नाज जी, होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन, दीपांशु ने ये मैसेज भेजा है और मेरी तरफ से आपको थैंक यू। और अपना फरमाइशी गीत भी लिख भेजा है, लेकिन आज के सवाल का जवाब नहीं भेजा है। और एक खास बात बताऊं, अपनी एक अच्छी आदत के बारे में बताना चाह रही हूं आपको कि मेरी नजर और मेरा ध्यान उसी मैसेज और उसी ईमेल पर टिकता है जिसमें कुछ न कुछ होता है। यानी अच्छी सी शायरी हो, कोई अच्छी सी बात हो, तो वो मैसेज ना मुझे अट्रैक्ट करता है। तो जल्दी से लिख भेजिए कुछ अच्छा सा, क्योंकि सिर्फ नाम पढ़ने में क्या मजा है ना। और इसी के साथ चलिए रुक कर लेते हैं दूसरे मैसेजेस का भी। शमशुर कमर जी ने मैसेज भेजा है शाहीन फातिमा, अदनान खान और अनु खान के साथ, अपना फरमाइशी गीत लिख भेजा है और आदाब किया है। हमारी ओर से भी आपको आदाब, आपका दिन शुभ हो। लेकिन आज के सवाल का जवाब और साथ में कुछ अच्छा सा लिखकर भेजिए ना, वक्त बहुत कम है। मैसेजेस और ईमेल तो आप बहुत पहले से भेजना शुरू कर देते हैं, लेकिन शेर व शायरी हो या कोई भी अच्छी सी बात हो, वो लिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। चलिए कोई नहीं, तब तक मैं आपको कुछ सुना देती हूँ। तो कहा यह गया है कि अगर ये कह दो बगैर मेरे जिंदगी नहीं जा रही गुजारी, तो मैं तुम्हारी, या उस पे मबनी कोई तासुर कोई इशारा, तो मैं तुम्हारी। तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहे लगाऊं बाजी। अगर मैं जीती तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारी तो मैं तुम्हारी। अच्छा है ना, ऐसे ही कुछ आपको भी लिखकर भेजना है, ठीक है। और तब तक मैं सुनवाती हूँ एक और गाना जिसकी फरमाइश हमारे पास आई है कृष्णा पार्क दिल्ली से, सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना, पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबरॉय की ओर से। तो लीजिए, ये रहा आपका गाना।

जी हाँ, बिल्कुल यही है वो म्यूजिक पीस जिसे आपने सुना और दूसरी बार सुना। इसे सुनकर आपको पहचानना है गाना और मुझे बताना है कि ये किस सॉन्ग का हिस्सा है। बोल आपको लिखकर भेजने हैं fmgoldairdelhi@gmail.com पर या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868886753 पर। और अब पढ़ते हैं ईमेल्स। लिखा है कि अच्छी बातें जो होती है ना, वो खुशबू की तरह होती हैं। जी हाँ, जितना बांटो उतना ही दिलों में महकती हैं। राजेंद्र जटोलिया जी ने ये मैसेज लिखा है, उषा जटोलिया चारू जटोलिया के साथ दिल्ली नागलोई से, और अपनी फरमाइश भी इन्होंने लिख भेजी है। अगला मैसेज आया है कहां से, मोहाली से, चंडीगढ़ से आया है, सेक्टर 67 से। जी हाँ, 67। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप की ओर से ये मैसेज आया।

है और बड़ी ही खूबसूरत बात लिखी है भाई। तेरी हर बात में एक मिठास शामिल हो, होठों पर हमेशा एक मुस्कुराहट शामिल हो, दुनिया की हर खुशी कदम चूमे तुम्हारे, मेरी हर दुआ में बस यही बात शामिल हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगला मैसेज है संदीप मक्कड़ जी का, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी की ओर से ये मैसेज आया है व्हाट्सएप पर, पिंगा वाला चौक गोराया जालंधर से, और इन्होंने भी बड़ी ही अच्छी बात लिखी है। कई बार ट्रैफिक में फंसा हुआ आदमी आगे वाले को पीछे वाला बोलता है, टी टी पी पी, और सुबह उठने के लिए अलार्म नहीं लगाना पड़ता भाई हमें, क्योंकि गाँव में कोयल की बोलने की जो तीव्र आवाज है वो सुबह उठने के लिए मजबूर ही कर देती है, मतलब है कि मोटिवेशन देती है, इंस्पायर करती है। अगर हम चाहते हैं सभी जगह ऐसा ही हो तो मरने से पहले जीना होगा, पेड़ लगाने होंगे और सबसे पहले इंसान बनना होगा। बहुत अच्छी बात कही संदीप जी आपने, मैं आपसे बिल्कुल पूरा पूरा इत्तेफाक रखती हूं और इसी बात पर अब सुनाने जा रही हूं आपकी ही पसंद का गाना। बहुत ही खूबसूरत फरमाइश है, पहले तो ये कहना चाहूंगी, प्रेम पर्वत फिल्म से है ये गाना और लता जी की आवाज है, सुनिए।

खर्च हो रही है जिंदगी, आजकल हिसाब नहीं रहता। खर्च हो रही है जिंदगी, आजकल हिसाब नहीं रहता कि कितने गम खरीदे हैं खुशियां समझकर, कितने लम्हे बेच दिए मामूली समझकर। मन भारी सा रहता है और जेब हल्की हल्की। कब कमाएंगे उतना कि जितनी खर्च हो रही जिंदगी। जी बिल्कुल, पैसे खर्च हो जाएं तो कोई बात नहीं, कीमत तो असली है वक्त की जो आप हमें दे रहे हैं अपना, अपने ईमेल्स और व्हाट्सएप के जरिए, और उसके लिए एक बड़ा सा थैंक यू तो बनता है। बातें आगे बढ़ें उससे पहले एक बार फिर सुना देती हूँ वो म्यूजिक पीस जिसे सुनकर आपको आज का गाना पहचानना है। जी तो जवाब लगातार आ रहे हैं आपके, जिन्हें पढ़कर और देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। जल्दी से कुछ और ईमेल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस शामिल कर लेती हूँ। हमने सवाल का जवाब 10:32 पर दिया है। जी आपने कल भी जवाब शामिल नहीं किया था। ये मैसेज आया है जयराम कोरवाल जी का, और आज के सवाल का जवाब भी लिखकर भेजा है इन्होंने। सही है या गलत अब से कुछ ही देर में आप जान जाएंगे, लेकिन फिलहाल उम्मीद है मुझे कि आपकी नाराजगी दूर जरूर हो गई होगी। और कहां से आया ये मैसेज? होली चौक उत्तम नगर से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मैसेज के लिए। अगला मैसेज शामिल करते हैं अब्बासी साहब का। सईद अब्बासी जी का ये मैसेज है, जानकारी साझा की है इन्होंने कि गायक मनहर उदास जी का जन्मदिन है आज, और उन्हीं के एक गीत की फरमाइश लिखकर भेजी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस ईमेल के लिए। और अगला मैसेज शामिल करते हैं, अभी तो मुझे सारे आज के सवाल के जवाब ही नजर आ रहे हैं जिसे मुझे अभी रिवील नहीं करना है, लेकिन कोई बात नहीं। नाज मैडम जी आपको प्यार भरा आदाब फरमाइशी गीत के साथ, लिखा है अनु खान ने अदनान खान, फैजान खान और आबाद खान के साथ। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर मुझे कोई शेरो शायरी नजर नहीं आ रही है, कोई अच्छी सी बात नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मैं ढूंढ रही हूं एक ऐसा ही मैसेज। फर्स्ट टाइम आई एम सेंडिंग आपकी आवाज, आपने जो शायरी पढ़ी बहुत अच्छी लगी, अब मैं क्या लिखूं? गंभीर बात है, कोई बात नहीं। एसके खन्ना जी का ये मैसेज है, और थैंक यू इस मैसेज के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस किस के मैसेज अभी अभी आए हैं। तो जॉन डिकेस्ट्रो साहब ने मैसेज कर दिया है, लिख रहे हैं कि गीत बहुत ही अच्छे चल रहे हैं और अपनी पसंद

कहीं कोई गीत सुनवा दीजिए। रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो के साथ जनकपुरी सहारनपुर से ये मैसेज लिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इस मैसेज के लिए। और अगला मैसेज है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा जी का, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार के साथ। लेकिन मैं नाराज हूँ आपसे, ना आपने सवाल का जवाब लिखा और ना ही कोई शायरी, ना ही कोई अच्छी बात, ये क्या बात हुई। चलिए कोई बात नहीं, अगली बार भेज दीजिएगा। एक और आया है मैसेज जिसे मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूं। लिखा है कि जब अगली बार आओ तो खूब सारे तोहफे लाना, जब अगली बार आओ तो खूब सारे तोहफे लाना, हम सच के आएंगे, हमें निहारने के लिए वक्त लाना। क्या बात है, बहुत अच्छी बात लिखी, बहुत ही खूबसूरत शायरी है। और एक खास बात बताऊं कि रिमाइंड करवाया है कि क्या ये मैसेज पढ़ा आपने। बहुत बढ़िया, छवि जी का ये मैसेज है जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, क्योंकि जग नाम इसमें हाँ लिखा है। छवि कॉल, रोहिन कॉल के साथ, सुमन कॉल भी इनके साथ शामिल हैं। और कहां से आया है ये मैसेज? गाजियाबाद से, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, अब घड़ी बहुत तेजी से भाग रही है तो मुझे बताना होगा आज के सवाल का जवाब और उस गाने की लिरिक्स, और साथ में वो गाना भी सुनवाना होगा जिसका प्रिल्यूड आपने सुना। तो दोस्तों, ये प्रिल्यूड हिस्सा है एक चार्ट बस्टर सॉन्ग का। फिल्म है साल 1991 में आई सौदागर, और जिसमें हमारे हीरो बड़े ही प्यार से अपनी हीरोइन को आई लव यू की शॉर्ट फॉर्म यानी ILU यानी ईलू ईलू से रूबरू करवाता है। मतलब कि बड़े डिटेल में वो इस लव्स के मायने समझाता है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक, आनंद बख्शी साहब के बोल इस ट्रैक की जान है। साथ ही कविता कृष्णमूर्ति के साथ उदित नारायण, मनहर उदास और सुखविंदर सिंह को आप सुनते हैं और बस सुनते ही रह जाते हैं। तो फिर चलिए, आप और मैं इंजॉय करें ये आइकॉनिक सॉन्ग। उससे पहले जान लेते हैं उन धुरंधरों के नाम जिन्होंने पहचाना इस धुन को और दिया बिल्कुल सही जवाब। रविंद्र कंपैली जी महाराष्ट्र से, सईद अब्बासी बुलंदशहर से, तिलक राज अरोड़ा खुर्जा यूपी से, सुभाष दिल्ली से, कृष्ण कुमार गुप्ता महोबा यूपी से, अनीता वर्मा पीतमपुरा दिल्ली से, सुदर्शन मुखी शांतिनगर सोनीपत से, मेहर अरोड़ा श्रीगंगानगर राजस्थान से, राजकुमार डूडी हिसार से, बोध राज खोरवाल उत्तम नगर दिल्ली से। ये नाम तो देखिए मैं लिख पाई हूं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे मैसेजेस आए हैं जिन्हें मैं शामिल करने की कोशिश चलिए कर लेती हूँ कुछ ही पलों में। बबलेश पंवार जी ने भी मैसेज लिखा है और सही जवाब के साथ लिखा है। लिख रहे हैं कि अब मैं बुरा नहीं मानता, मैं हमेशा सुनता हूँ सबकी पर अब मैं बुरा नहीं मानता। कौन क्या कहता है मेरे पीछे इस बात की परवाह नहीं ठानता। चलते चलते राहों पर अगर कोई शूल कभी चुभ जाए, कोई दे दे जख्म जबां से, तो मैं रुकता नहीं चलता जाता हूँ। ताने हो या कोई कड़वी बात, सबको खामोशी से सुन लेता हूँ। बुरा मानकर अपना वक्त गवाने से अच्छा मैं अपने ही सुकून के धागे बुन लेता हूँ। बहुत अच्छा करते हैं, सबको ऐसा ही करना चाहिए। जी हाँ, डैनी पवार मनीष पवार के साथ गांधी चौक बाड़मेर राज से ये मैसेज लिखा और दिया आज के सवाल का सही जवाब भी। दोस्तों, सॉरी बोलूंगी उन सभी लिसनर्स को जिनके नाम में शामिल नहीं कर पाई हूँ वक्त की कमी के चलते, और सुनाऊंगी आपको ये खूबसूरत गीत जिसे आप सबने पहचाना और क्या खूब पहचाना। ठीक है, आप जाएंगे कहीं नहीं क्योंकि इस गाने के बाद होंगे समाचार और मैं फिर मिलूंगी आपसे। कार्यक्रम होगा

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: ना रंगासामी कड़वलीन पेयराल उरुदी कूरुदावदे नान नेर्मुगमागवो अल्लद मरेमुगमागवो ओरुवरुक्को अल्लद पलरुक्को இந்திய ஒன்றியத்தின் புதுச்சேரி ஆட்சி பரப்பின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் என் கவனத்திற்கு கொண்டுவரப்படும் அல்லது எனக்கு தெரிய வரும் எந்த செய்தியையும் மேற்கூறிய முதலமைச்சர் என்ற வகையில் என்னுடைய கடமைகளை முறையாக ஆற்றுவதற்கு தேவைப்பட்டவரன்றி தெரிவிக்கவோ அல்லது வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன்.
0: अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के ए नमस्सीवेयम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, भाजपा नेता अध्यक्ष वीपी रामलिंगम अधिकारी और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वित्री कड़गम टीवीके के सरकार को विधानसभा में आज बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वासमत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की उनकी हालिया यात्राओं के दौरान लागू की गई थी। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की है। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। वे आज चिली के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोपहर बाद वे दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। शाम को डॉ जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मिलेंगे। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस के क्राइम ब्रांच यूनिट ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बीच कल रद्द कर दी गई थी। सरकार ने सीबीआई को अनियमितताओं की व्यापक जांच के निर्देश दिए हैं। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित

कर दिया गया। मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतीक यादव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार से पहले मामूली रूप से बढ़त नजर आई और फिर इसमें गिरावट दर्ज की गई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 75 अंक की अधिक की वृद्धि के साथ खुला और बाद में 180 अंक गिरकर 74,360 पर आ गया। निफ्टी 41 अंक की गिरावट के साथ 24,350 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम और आदाब। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ट्यून कर चुके हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जहां मैं आपकी होस्ट और घुमक्कड़ दोस्त नाज हूँ आपके साथ। नजरें घुमाकर देखा है मैंने तो पाया है कि स्टूडियो की घड़ी का है इशारा कि समय हुआ है इस वक्त 11:11 और 30 सेकंड्स भी हो गए। और जैसा कि आप जानते ही हैं, ये समय है एक दिलकश और खूबसूरत सफर का विद मेलोडियस ट्रैक्स ऑफ ओल्ड एरा, क्योंकि ये टाइम है तस्वीर का। ठंडा मौसम, हल्की बारिश, हाथ में उसका हाथ था, चंद कदम हम साथ चले थे, आंख खुली तो ख्वाब था। लेकिन जनाब, ये कोई ख्वाब नहीं है, शत प्रतिशत आप जागे हुए हैं और मेरे साथ चंद कदम नहीं बल्कि बड़ी दूर तक चलना है आपको। कहाँ, यही तो गेस करना है भाई। ना तो बारिश का मौसम है और ना ही फिलहाल कोई आसार। हालांकि सुबह लग रहा था दिल्ली में कि बारिश होगी, पर अभी फिलहाल मुझे कोई आसार नजर नहीं आ रहे। तो ये शेर मैंने क्यों पढ़ा, अगर आप ये सोच रहे हैं, तो भाई ये शेर था आपके लिए एक क्लू उस खूबसूरत जगह के बारे में जहां की सैर आज आप मेरे साथ करने वाले हैं। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में मौजूद है, बादलों और नेचर का घर है, स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट के नाम से मशहूर है। और भाई कसम से बड़ी कमाल जगह है, ऑफिशियली सोहरा है इसका नाम। तो फिर देरी का अब क्या काम, सारे हिंट्स दे दिए हैं मैंने और आप समझ ही गए होंगे कि कहां की तस्वीर के दीदार आप मेरे साथ करेंगे आज। जल्दी से लिख भेजिए fmgoldairdelhi@gmail.com पर ईमेल के जरिए या फिर 9868886853 पर कर दीजिए व्हाट्सएप मैसेज। थोड़ा जल्दी कीजिएगा, इस अमेजिंग ट्रैक को सुनने के बाद मैं बताऊंगी कि क्या है और कहां है ये जगह।

जी हाँ, बिल्कुल 16 आने सही गेस किया है आपने। टिप टिप नहीं बल्कि मूसलाधार बारिश के लिए दुनिया भर में मशहूर चेरापूंजी चल रहे हैं आप तस्वीर में मेरे।

यानी नाज के साथ। और किस किस ने किया सही गैस, उनका नाम लिए बिना तो चेरा पूंजी में एंट्री मिलेगी नहीं। तो भाई शामिया खान रुड़की उत्तराखंड से, गिरीश पलड़िया हल्द्वानी उत्तराखंड से ही, और अनुराधा गुप्ता जयपुर से, इन्होंने भेजा बिल्कुल सही सही सही नाम। नाउ बैक टू द सोहरा यानी चेरा पूंजी, जो भारत के मेघालय राज्य में मौजूद है और राजधानी शिलोंग से 35 मील यानी लगभग 55 किलोमीटर के आसपास है। ऑफिशियली इसे इसके पुराने नाम सोहरा से भी जाना जाता है, और कहा यह भी जाता है कि चेरा पूंजी इस नाम का मतलब होता है संतरे की भूमि यानी लैंड ऑफ ऑरेंजेस। एक्चुअली लोकल स्टोरीज की माने तो सोहरा इस शब्द का खासी भाषा में अर्थ संतरे की भूमि ही होता है, और खासियत यह भी है कि यहां संतरों की एक खास किस्म मैंडरिन की बड़े पैमाने पर खेती होती है, जो अपने स्वाद और क्वालिटी के लिए वर्ल्ड फेमस हैं। माना यह भी जाता है कि नागपुर के मशहूर संतरे भी बेसिकली चेरा पूंजी के संतरों के ही सक्सेसर यानी वंशज हैं। और एक खासियत बताऊं, चेरा पूंजी मशहूर है अपने खास ऑरेंज हनी के लिए भी, जो असल में संतरों के बागों से ही इकट्ठा किया जाता है, जिसका टेस्ट कुछ अलग ही होता है। और बात तो कुछ अलग इस अगले ट्रैक में भी है, क्योंकि इसे चाहे जितनी बार भी सुन लीजिए, हर बार नया सा ही लगता है।

पहुंचना कैसे है चेरापूंजी, चलिए अब इस पर भी बात हो जाए। तो देखिए, चेरापूंजी का अपना कोई बड़ा रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट तो है नहीं, तो यहाँ पहुंचने के लिए बाय रोड ही आपको आना पड़ेगा। और बाय गॉड, जो रास्ते हैं ना यहाँ के, बस कमाल ही हैं। बाकी शिलोंग और गुवाहाटी के लिए आप फ्लाइट बुक कर सकते हैं, जहां से आराम से बाय रोड चेरापूंजी पहुंचा जा सकता है। ट्रेन से आएंगे तो भी उतरेंगे गुवाहाटी रेलवे स्टेशन ही, जिसके बाहर पल्टन बाजार से आपको बड़े आराम से चेरापूंजी के लिए बसें या फिर टैक्सीज मिल जाएंगी। बस फिर 4 से 5 घंटों के अंदर आप पहुंच जाएंगे चेरापूंजी, और फिर जमकर कीजिए मस्ती। चेरापूंजी के अंदर ट्रेवल करने के लिए प्राइवेट टैक्सीज, शेयरिंग टैक्सीज सब मौजूद हैं। और अगर आप पहुंचे हैं अपने श्रीमान या श्रीमती जी के साथ, तो सजेशन ये है कि रेंट पर लीजिए स्कूटी या बाइक और भूल जाइए सारी टेंशन। अब देखिए, बात सीधी सी है, मंजिल पा लेने में वो मजा कहाँ जो मंजिल तक के सफर में है। तो एंजॉय करते रहिए खूबसूरत चेरापूंजी का ये सफर विद मी, वन मोर लवलीएस्ट सॉन्ग। अच्छा, ये जो सॉन्ग है ना, इसमें भी कुछ खास बात है, अगर जानते हैं तो जरा लिख भेजिए। पर जल्दी।

तो अपने टाइम का चार्ट बस्टर सॉन्ग, और खासियत ये कि गीतकार रविंद्र रावल ने बड़ी ही चतुराई के साथ पुराने दौर की फिल्मों के नामों को पिरोते हुए इस गीत के बोल लिखे हैं, और ऊपर से राम लक्ष्मण जी के म्यूजिक ने तो बस कमाल ही कर दिया है ना। नाउ बैक टू द चेरापूंजी, वापस आ जाइए जहां की तस्वीर आप मेरे यानी नाज के साथ देख और सुन रहे हैं। चेरापूंजी की ये तस्वीर यहाँ के जीवित जड़ पुलों यानी लिविंग रूट ब्रिजेस के जिक्र के बिना अधूरी है जनाब। लोकलाइट यानी खासी जनजाति के प्राचीन इंजीनियरिंग और सब्र का बेस्ट एग्जाम्पल है ये। असल में ये जो पुल है ये लोहे या सीमेंट से नहीं बल्कि फीकस इलास्टिका, जिसे भारतीय रबर ट्री भी कहा जाता है, उसकी जिंदा जड़ों से बनाए जाते हैं। चेरापूंजी की खासी जनजाति इन पेड़ों की एरियल रूट्स यानी हवा में झूल रही जड़ों को बांस या सुपारी के खोखले तनों के जरिए बांध देते हैं और नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे को जोड़ देते हैं।

कमाल की बात यह है कि इन पुलों की उम्र 500 साल तक की भी हो सकती है, तो अंदाजा लगाइए जरा इनकी मजबूती का। हालांकि इस तरह का एक पुल बनने में एवरेज 10 से 15 साल का समय लग जाता है, पर यकीनन ये किसी अजूबे से कम नहीं है। ठीक, जैसे ये अगला सॉन्ग। अच्छा, फिल्म का नाम भी अजूबा ही है। माफ कीजिए, फिल्म का नाम अजूबा नहीं है, फिल्म का नाम तो जीन्स है, गाना, गाने के बोल जो हैं वो हैं अजूबा। फील कीजिए इस अजूबे को और जल्दी से वापस आ जाइए।

देखकर आपको भी लगता है कि आपके आसपास कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा है, कुछ अनोखा नहीं हो रहा है, सब नॉर्मल सा है, तो ध्यान से सुनिए गीत के बोल। जावेद अख्तर साहब कितनी बखूबी बता रहे हैं कि भाई आसपास कितना कुछ हो रहा है जो अजूबा है।

मैं डॉक्टर ऋचा सूद, CBSE नेशनल अवार्डी प्रिंसिपल और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एथलीट हूँ। 15 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं, जिसमें की 4 स्वर्ण पदक भी हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरा होना एक बहुत बड़े गौरव की बात है और हम सभी श्रोताओं के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि आकाशवाणी ने, मुझे लगता है कि हर किसी के जीवन के हर छोटे बड़े अवसर पर, हर छोटे बड़े पड़ाव पर साथ दिया है और हमें संगीत से जोड़कर जिंदा रखा है। अगर जिंदगी में संगीत की मिठास है तो वो आकाशवाणी की वजह से है, वरना शायद हम सब संगीत को जानते ही ना होते। आकाशवाणी ने हर उस मौके पर, हर उस अवसर पर, हर उस उत्सव पर हमें जिंदा रखा है एक लाइफ लाइन के जैसे, कि जैसे मान लीजिए रक्षाबंधन है, दिवाली है, या भाई दूज है, या नया वर्ष है, या किसी का जन्मदिन है। कोई भी ऐसा उत्सव जिसमें आकाशवाणी ने हमारा साथ ना दिया हो, ऐसा नहीं है। चाहे रोमांस हो या ब्रेकअप हो, पढ़ाई हो या अकेलापन हो, पहाड़ों पर हो, मैदानों पर हो, या घर में हो, और आजकल तो कार में भी आकाशवाणी हमारे साथ ही चलता है। मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन ने, जो 70-80 के दशक के लोग हैं, उन्होंने तो संगीत आकाशवाणी से ही सुना है और आज भी हमारा पुराना नाता है। मुझे लगता है कि ये बताना बहुत जरूरी है कि हम भाई बहनों में आकाशवाणी पर गीत सुनने के लिए ट्रांजिस्टर को लेने में, चलाने में और छिपाने में अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। तो एक बचपन में जो खेल जैसा एक नाता है, वो भी है हमारा आकाशवाणी से।

को लेकर आ पहुंची हूँ चेरा पूंजी, जिसके बारे में एक बात तो बच्चा बच्चा जानता है। अरे भाई, सामान्य ज्ञान के शुरुआती ज्ञान में ही हम ये रट चुके होते हैं कि भारत में सर्वाधिक, मतलब कि सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह कौन सी है। जवाब है चेरापूंजी। लेकिन ऐसा होता क्यों है, ये मैं आपको बताती हूँ। ज्यादा बारिश की सबसे बड़ी वजह है चेरापूंजी की जियोग्राफिकल लोकेशन, और साथ में यहाँ के पहाड़ियों की बनावट भी काफी हद तक इसके लिए जिम्मेदार है, जो कि फनल यानी कीप के आकार की होती है और तीन तरफ से घिरी हुई है। तो जनाब, होता यूं है कि मॉनसून के दौरान जब बे ऑफ बंगाल की तरफ से नमी से भरी हवाएं नॉर्थ की तरफ जब बढ़ती हैं, तो सीधा इन पहाड़ियों से टकराती हैं, और जब उन्हें आगे जाने का रास्ता नहीं मिलता तो मजबूर होकर उन्हें ऊपर की ओर उठना पड़ता है। फिर लागू होता है बारिश का बेसिक रूल, हवा ऊपर उठती है, ठंडी और कंडेंस्ड होती है, और नतीजतन यहाँ भारी बारिश होती है। हालांकि फिलहाल चेरापूंजी के नजदीक ही मौसिन राम एक जगह है जहाँ औसतन चेरापूंजी से थोड़ी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, लेकिन फिर भी चेरापूंजी की बारिश अपने आप में खास है। और खास है ये अगला गाना भी, जिसे आप सुनेंगे और इस गर्मी के मौसम में लेंगे चेरापूंजी की बारिश का एहसास।

0: चेरापूंजी के संतरों की बात हो गई, बारिश की बात भी हो गई, रूट ब्रिजेस की बात भी हो गई, लेकिन भाई यहाँ के फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स का अगर जिक्र नहीं करेंगे तो बात अधूरी नहीं रह जाएगी। चेरापूंजी की ये खूबसूरत तस्वीर, हो जाइए गंभीर, क्योंकि मैं लेने जा रही हूँ वो नाम। चेरापूंजी आकर जहां जाना तो बनता है बॉस। तो इस हरे भरे स्वर्ग में आप सबसे पहले सैर कीजिए नोह कालाई फॉल्स की, जो भारत के सबसे ऊंचे झरनों में शुमार है। साथ ही चेरापूंजी के सबसे फेमस स्पॉट्स में इसकी जगह फिक्स है। इसके अलावा वेई सावदोंग फॉल्स भी देखने लायक है। वेई मतलब तालाब और सावदोंग का मतलब होता है स्क्वायर यानी चौकोर। परतदार चट्टानों से गिरता पानी आंखों और मन को सुकून देता है और चेरापूंजी की तस्वीर में अपना अलग रंग भर देता है। भाई झरनों की बात हो रही है तो डेनथ लेन फॉल्स का जिक्र भी तो बनता है। आपको बता दें कि डेनथ लेन फॉल्स जो है वो चेरापूंजी में बहुत ही मशहूर है और अपने बड़े आकार और तेज आवाज की वजह से ये जाना जाता है। दोस्तों लगभग 80 मीटर ऊंचे इस झरने की अगर मैं बात करूं तो खूबसूरत व्यूज और पक्षी आप यहां से निहार सकते हैं और फिर इसके बाद आप रुक कर सकते हैं सेवन सिस्टर फॉल्स का, जो कि लगभग 315 मीटर मतलब बहुत ही ऊंचाई से नीचे गिरता है। औसत चौड़ाई इस झरने की है 70 मीटर के आसपास और यहां पहुंचने के लिए आपको बिल्कुल देर नहीं लगनी चाहिए। छोड़ देना है हर बहाना और यहां जरूर जरूर है आना।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

अच्छा, खूबसूरत केव्स यानी गुफाओं के मामले में भी चेरापूंजी बहुत अमीर है। घनी हरियाली से घिरा एक बड़ा ही खूबसूरत बगीचा है यहाँ, जो गुफाओं, तालाबों और छोटे छोटे झरनों से भरा हुआ है। मेनली इसके सात हिस्से हैं और हर हिस्सा अपनी अलग कहानी सुनाता है। चेरापूंजी बस स्टैंड के आसपास जब आप हों तो जरूर जाइएगा। यहाँ फेमस मावसमाई केव्स है इस जगह का नाम, क्योंकि वहां से ये सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है। चूना पत्थर की गुफाएं आप यहां पर देखेंगे, जिसका एंट्रेंस काफी बड़ा है। और फिर आप जाइए अरवा केव्स, जो लाखों साल पहले एकदम नेचुरल तरीके से बनी थी और अभी तक सबका ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं। बात करेंगे चेरापूंजी के खूबसूरत पार्क्स यानी बगीचों के साथ साथ यहाँ के लजीज स्वाद की भी, बट आफ्टर दिस ब्यूटिफुल मेलोडी।

touch with radio, with Akashvani, for last 60 years. Wow! However, you have very decent voice. Thank you so much, sir. Aur Anuji ne bhi bhej diya hai message. Likh rahi hai ki whenever I get time, I will go to Cherrapunji and enjoy all whatever you explain in today's show. Thank you so much. Chaliye, वापस आ जाते हैं चेरापूंजी और बात कर लेते हैं थोड़ी सी. जैसा कि मैंने किया था आपको प्रॉमिस, अब आप चलेंगे मेरे साथ चेरापूंजी के फेमस गार्डन्स, जिसमें सबसे पहले बात चेरापूंजी के इको पार्क की, जो वाकई एक शानदार जगह है. यहाँ की नेचुरल ब्यूटी हर मौसम के साथ बदलती है, लेकिन बरकरार रहती है वो चीज, जो चीज वो है इस जगह की खूबसूरती. इसके बाद थांग खारंग पार्क भी है, जहां आपको जरूर जाना चाहिए. 100 एकड़ से ज्यादा की जमीन पर फैला ये पार्क चेरापूंजी की सबसे, मतलब सबसे ही शांत जगहों में से एक है. एक ग्रीन हाउस, एक खूबसूरत फाउंटेन, 2 व्यू पॉइंट्स और एक छोटा पुल आप यहां पर देखेंगे. पिकनिक के लिए ये जगह बेस्ट है. फिर थोड़ा सुस्ता लीजिए और पहुंच जाइए माव फलांग वन भी, जहां पर आपको 450 के करीब पेड़ और पौधों की वराइटीज देखने को मिलेंगी. और इतना सब घूमने के बाद जब आपके पेट में चूहे करने लगे डिस्को, तो भाई जल्दी से इन जगहों से खिसको और पहुंच जाओ चेरापूंजी के किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट या होटल में, जहां आपको बड़े ही प्यार से परोसे जाएंगे खासी जनजाति से इन्फ्लुएंस्ड बेहद लजीज पकवान. चावल यहाँ का स्टेपल फूड है, जिसे कई तरह से पकाकर और सजाकर आपको खिलाया जाएगा. नॉनवेज में जादो, दोहने योंग और तुंग तापी फेमस है. वेज आइटम्स में सोहरा पुलाव, पुथारो और पुखलीन. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चेरापूंजी का खास ऑरेंज हनी. आपको चखे बिना वापस नहीं आना है. और इसी के साथ दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का. उम्मीद है तस्वीर में आज चेरापूंजी के रंग मेरे यानी नाज के संग आपको जरूर पसंद आए होंगे. फिलहाल जाती हूं मैं इस वादे के साथ कि बहुत जल्द फिर किसी खूबसूरत जगह की तस्वीर के साथ जरूर होगी मुलाकात. अभी के लिए टाटा, खुदा हाफिज और नमस्कार.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित तमिल का वितरी कड़गम टीवी के सरकार ने विश्वास मत में बहुमत हासिल कर लिया है। 144 विधायकों ने पक्ष में मतदान किया है। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के ए नमसिवियम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम, अधिकारी और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की उनके हाल ही यात्राओं के दौरान लागू की गई। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिसो पेरेस मैकेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिसको ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुग्यानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। पंजाब सरकार ने रक्षा बलों में कार्यकाल पूरा करने के बाद अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण नीति बनाने का निर्णय लिया है। प्रक्रिया रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दे दी है। सरकार का कहना है कि पंजाब पुलिस, वन रक्षक, अग्निशमन सेवा, जेल, होमगार्ड और अन्य कई विभागों में उनकी सेवाओं को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Hamden.
1: नमस्कार। अगर इस वक्त आपकी जिंदगी एक स्क्रीन होती तो उस पर क्या चल रहा होता? रफ्तार, जिम्मेदारियां या थोड़ी सी थकान? तो चलिए अगले 50 मिनट तक के लिए उस स्क्रीन को थोड़ा सा पॉज करते हैं और कनेक्ट होते हैं खुद से, अपनों से और जिंदगी के जज्बातों से। आप सुन रहे हैं ना, तो घुमाते हैं पहिया कार्यक्रम घर आंगन का और इन लम्हों में आपकी सारथी बनी हूं मैं, श्रुति पुरी। ये समय है दोपहर 12:10 का और अगर 1 बजे तक भी आपको लगे कि आपकी कोई बात, कोई अनुभव या कोई सवाल इस बातचीत का हिस्सा बनना चाहिए तो हमें लिखिए fmgoldgia@gmail.com पर, क्योंकि यहाँ आपकी आवाज जुड़ती है उस सफर से जो हमें आप तक ला रहा है। एफएम गोल्ड 100.1 MHz पर, इंद्रप्रस्थ पर आप हमसे जुड़े हैं 366.3 मीटर यानी 819 KHz और DRM 810 KHz पर, और हमारा डिजिटल परिवार हमें सुन रहा है AIR न्यूज लाइव 24/7 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए कार्यक्रम के रथ को आगे बढ़ाते हैं और एक नया अनुभव संजोते हैं इस गीत के साथ। हम जोली फिल्म में अभी आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

और श्रोताओं, अब समय है सुविचार का। आज के सुविचार को हो सकता है कि आप भी शायद मेरी तरह पसंद करें। महान कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। दिनकर जी ये बताना चाहते हैं कि अगर इंसान पूरे मन से मेहनत करे और हार न माने तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो सकती है। कई बार जीवन के रास्ते बंद लगते हैं, लेकिन लगातार प्रयास करने वाला व्यक्ति अपना रास्ता खुद बना लेता है। सफलता पाने के लिए हौसला, मेहनत और विश्वास बहुत जरूरी है, और जरूरी है अपनों का साथ।

या उनके साथ होने का एहसास। प्यासा सावन, इस फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे हैं।

आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 मई महीने की दिनांक 13 और दिवस है बुधवार। श्रोताओं, आकाशवाणी के तवांग केंद्र से हमारा आज का प्रसारण आरंभ होता है। अब से लेकर प्रसारण के अंत तक यानी रात्रि 9:16 तक प्रसारित किए जाने वाले तमाम कार्यक्रमों को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी कक्ष में उपस्थित कार्यक्रम सहायक श्री तंजिन दुर्जी, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित तकनीकी सहायक मिस शेखा दीघा, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी सहायक श्री तानिंग तको, मोनपा में उद्घोषक श्री तुप्तन टाशी तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका यशु वांगमो। कार्यक्रम सुन रहे आप सभी श्रोताओं का हमारे आज के इस प्रसारण में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं।

मीडियम में 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज और साथ ही एफएम फ्रीक्वेंसी 104 मेगाहर्ट्ज पर

मीडियावेव के मीटर बैंड पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोताओं, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अब से कुछ ही पलों में यानी दोपहर 2 बजे आप सुन सकेंगे मिडडे न्यूज के अंतर्गत अंग्रेजी में समाचार। तत्पश्चात दोपहर 2:15 पर आप सुन सकेंगे दोपहर समाचार के तहत हिंदी में समाचार। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति

0: की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। श्री रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। बिपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली, जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के पांच अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव मंत्री परिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कारपूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट, डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष सीबीएसई की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकीय विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। सीबीएसई ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली

0: दो दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
1: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली दो दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि यह लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीत वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल 1 जून के आसपास के

0: केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के पांचवें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे के तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9, 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदाम्बी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य चार मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: श्रोताओं में आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अंग्रेजी तत्पश्चात हिंदी में समाचार। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना। इसके अंतर्गत आइए आनंद लेते हैं शिव महिमा

विश्व तो व्यवस्थित सुन रहे थे शिव महिमा कार्यक्रम वंदना के अंतर्गत। इसी के साथ ही कार्यक्रम भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना भी पर समाप्त हुआ। मीडियम के मीटर बैंड पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता समय दोपहर के तीन बजे हैं और अब प्रस्तुत है विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत आनंद लेते हैं मायूक हजारिका के स्वर में चंद असमय फिल्मी नगमे। तो लीजिए पेश कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

0: श्रोताओं में पान ले रहे थे महायुग हजारिका की आवाज में चंद असमय फिल्मी नगमे। इन्हीं नगमों के साथ ही अलग अलग प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत अभी पर समाप्त हुआ। मीडियम एप के मीटर बैंड पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोताओं समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी बात। कार्यक्रम मेरी बात में आइए सुनते हैं पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तवांग की 11वीं कक्षा की छात्र मिस जम्बे वांगमो से राष्ट्र निर्माण में एनसीसी की भूमिका विषय पर वार्ता।
1: आकाशवाणी तवांग से प्रसारित दैनिक कार्यक्रम मेरी बात में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं कुमारी जम्बे वांगमो पीएम श्री जेन्नी तवांग में कक्षा 11वीं विज्ञान की छात्रा हूं। आज इस कार्यक्रम में मेरी वार्ता का विषय है राष्ट्रीय निर्माण में एनसीसी की भूमिका। एनसीसी का पूरा नाम नेशनल कैडेट कोर है। इसकी शुरुआत 1948 में हुई थी। इसका उद्देश्य देश के युवाओं को अनुशासित, आत्मनिर्भर और देशभक्त बनाना है। एनसीसी का आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। एनसीसी का सबसे बड़ा योगदान यह है कि यह छात्रों में अनुशासन और आत्मविश्वास पैदा करता है और कैंप के दौरान एनसीसी कैडेट्स शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं।

0: इसके कारण हमें समय की कीमत समझ में आती है और हम टीम में काम करना सीखते हैं। एनसीसी हमें देश से प्यार करना और देश की सेवा करना सिखाता है। गणतंत्र दिवस और अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों में एनसीसी के रेस भाग लेते हैं, जिससे देशभक्ति की भावना मजबूत होती है। एनसीसी के रेस समाज सेवा में भी सबसे आगे रहता है। बाढ़, भूकंप या किसी भी आपदा के समय एनसीसी के रेस लोगों की मदद करते हैं। इसके अलावा स्वच्छता अभियान, रक्तदान और जागरूकता कार्यक्रमों में भी एनसीसी के रेस का बड़ा योगदान है। एनसीसी युवाओं को सेना में जाने के लिए प्रेरित करता है, इससे देश की सुरक्षा मजबूत होती है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि एनसीसी हमें अच्छा इंसान और अच्छा नागरिक बनाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: श्रोताओं, आपने सुना कार्यक्रम मेरी बात के अंतर्गत पीएम श्री जेहनवी तवांग की 11वीं कक्षा की छात्र मिस जम्बे वमो से राष्ट्र निर्माण में एनसीसी की भूमिका विषय पर वार्ता। श्रोता, इसी के साथ ही कार्यक्रम मेरी बात अभी पर समाप्त हुआ। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:33 हुए हैं और अब प्रस्तुत है मैना पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत। नारी संगीत कार्यक्रम को शुरुआत करते हुए पहला नगमा लीजिए पेश है ऊंचाई फिल्म से नकीशीस अजीज की आवाज में। गीत इरशाद कमिल के है तथा संगीत अमित द्विवेदी का।
2: कुछ कम झुम झुम कुछ कम झुम झुम कुछ कम झुम।

Leon D'Souza और सुसैन डी मेलो की गाए फिल्म एक दीवाना था किसी नगमे के साथ ही मैला पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत अभी यहीं पर समाप्त हुआ। श्रोता हमारा अगला कार्यक्रम सुनने से पहले ये सुनते हैं यह संदेश।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मीडियम में 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ और साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता समय दोपहर के 3:50 हुए हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। गीत मंजरी कार्यक्रम को आरंभ करते हुए पहला नगमा आइए आनंद लेते हैं विकी विद्या का वो वाला वीडियो फिल्म से। विशाल मिश्रा, हंसिका परेख और सचिन जिगर की आवाजों में। इस गीत के गीतकार है सोम तथा संगीतकार है सचिन जिगर।

शिव तो भी अपने आनंद लिया परंपरा टंडन की आवाज में फिल्म दो पति से यह खूबसूरत गीत। इस गीत के गीतकार थे कौसर मुनीर तथा संगीतकार थे सचेत परंपरा। श्रोतों कार्यक्रम का अगला नगमा आइए आनंद लेते हैं अमर प्रेम की प्रेम कहानी फिल्म से अरिजीत सिंह के स्वर में। कुणाल वर्मा के लिखे इस गीत को संगीत दिया है प्रसाद एस ने।

गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे बोल पर वरुण जैन, शिल्पा राव और सचिन जिगर की गाई कार्यक्रम का अगला नगमा ये सुनते हैं स्त्री टू फिल्म से। इस गीत को संगीत से संवारा है सचिन जिगर ने।

श्रोताओं, भी आपने सुना दलजीत दुष्यंत और साथियों की आवाज़ों में फिल्म सुरमा से यह गीत। इस गीत के गीतकार थे गुलजार तथा संगीतकार थे शंकर एहसान लॉय। श्रोता, इस समय आप आनंद ले रहे हैं चंद हिंदी फिल्मी नगमे कार्यक्रम गीत मंजरी के अंतर्गत आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। गीत मंजरी कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए आइए आनंद लेते हैं अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो के युगल आवाजों में फिल्म क्या यही प्यार है से। इस गीत के गीतकार है जलेश रशीद तथा संगीतकार है साजिद वाजिद।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा आइए हम आपको सुनवाते हैं सायराना फिल्म से विशाल मिश्रा और हंसिका परेख की आवाजों में, गीत राजशेखर के तथा संगीत विशाल मिश्रा का।

योधों कार्यक्रम का अगला नगमा आइए आनंद लेते हैं दर्शन रावल, जोनिका गांधी और रोचक कोहली के युगल आवाज।

श्रोताओं, जोज परार और परंपरा टंडन के गाय फम बागी फोर के सिनेगमे के साथ ही फम संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी अवी पर समाप्त हुआ। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता समय संध्या के 4:30 वह है और अब प्रस्तुत है शास्त्र संगीत का कार्यक्रम रागरंग। रागरंग कार्यक्रम में लीजिए पेश है पंडित अजय पोहनकार से राग बागेश्वरी पर खयान। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम रागरंग।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे पंडित अजय पोहनकर से राग बागेश्री पर ख्याल। श्रोताओं, इसी के साथ ही शास्त्र संगीत का कार्यक्रम राग रंग अभी पर समाप्त होता है। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित आपसे कुछ ही पलों में, यानी संध्या 4:45 पर सुनेगा हिंदी में समाचार। तत्पश्चात 4:55 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।
1: मगर जाने जा गामा दाने दा मगर गा मगर जाने जा गर जाने जाने जा मगर जा गामा जाने जा गधा।
2: यह आकाशवाणी है, अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे पुलिस ने होलोंगी वन अधिकारियों के सहयोग से वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तहत लगभग 1.02 करोड़ रुपए की राइनो हॉर्न की तस्करी का भंडाफोड़ किया। जिला उपायुक्त सह डीडीएम अध्यक्ष कैपिटल रीजन तोको बाबू ने आगामी दक्षिण पश्चिम मानसून की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन राजधानी ईटानगर स्थित आईजी पार्क के डीसी कैंप ऑफिस में की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। पश्चिम एशिया संघर्ष में उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए। सरकार द्वारा आयात शुल्क में लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल मानसून जल्द आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे पुलिस द्वारा होलोंगी वन अधिकारियों के सहयोग से वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तहत लगभग 1.20 करोड़ रुपए की राइनो हॉर्न के तस्करी का भंडाफोड़ किया है। सूत्रों के अनुसार इस ऑपरेशन में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को अवैध वन्यजीव व्यापार से जुड़े लेनदेन के दौरान पकड़ा गया। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण तारू गुसार ने कहा है कि ये कार्रवाई 12 मई को होलोंगी और असम के आसपास के क्षेत्र में मिली पुख्ता सूचना के आधार पर की गई। इस मामले में संबंधित धाराओं के तहत वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है, जिसके तहत आगे की जांच अभी जारी है। जिला उपायुक्त सह डीटीएमए अध्यक्ष कैपिटल रीजन तोको बाबू ने आगामी दक्षिण पश्चिम मानसून की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन राजधानी ईटानगर स्थित आईजी पार्क के डीसी कैंप ऑफिस में किया। बैठक में मानसून से होने वाली आपदाओं के प्रभाव को कम करने हेतु रणनीतियों और सावधानियों पर विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने सभी विभागों को समन्वय के साथ तैयार रहने और पर्याप्त मानव संसाधन, मशीनरी एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध रखने के निर्देश जारी किए। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया। एडापडी पलानीसामी ने नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता की 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का

0: शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली, जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रह गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों की वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई है। एक रिपोर्ट।
1: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। सुनिए ये रिपोर्ट।
2: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव ने मंत्री परिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कारपूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजीलॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष CBSE की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी विशेषज्ञ में परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। CBSE ने एक बयान में बताया है कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है, जबकि छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है और छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI द्वारा शुभम खेरनार की कथित नीट पर पेरलीक मामले में हिरासत में लिया गया है। शुभम को महाराष्ट्र के नासिक में कल क्राइम ब्रांच द्वारा हिरासत में लिया गया था। ये कार्रवाई राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर की गई थी। नीट UG 2026 परीक्षा जिस महीने की 3 तारीख को आयोजित की गई थी, पेपरलीक आरोपों के बाद कल रद्द कर दी गई। सरकार ने जांच की जिम्मेदारी CBI को सौंपी है। इसी मामले में लातूर में एक अभिभावक ने शिकायत दर्ज कराई है कि कोचिंग संस्थान द्वारा परीक्षा से पहले कराए गए मॉक टेस्ट में 42 प्रश्न वास्तविक नीट पेपर से मिलते जुलते पाए गए थे। लातूर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे इस मामले से जुड़ी कोई भी जानकारी या सबूत सामने लेकर आए। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर राज्यों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 6 जिलों तवांग, क्रादादी, अपर सुबनसिरी, शियोमी, दिबांग वैली और लोहित को छोड़कर सभी अन्य जिलों के लिए अगले 24 घंटों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन जल्द हो सकता है, इस तरह की कार्रवाई विज्ञप्ति जारी की है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून आ जाएगा। विभाग ने बताया कि दक्षिणी पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव के क्षेत्र कल भी इसी तरह के क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। IMD ने कहा है कि अगले 24 घंटों में इसके और अधिक प्रभावी होने की संभावना है। भारत में कल से शुरू होने वाले 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश

0: मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकोनेका से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
1: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली दो दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों की विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रनों से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। उधर बैंकॉक के थाईलैंड में ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे तुंग सीउतोंग को सीधे सेट में 21-9 21-12 के मात्र 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क की अमाली शुल्स से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदांबी श्रीकांत ने सिंगापुर में लो केन यू को आसानी से 21-14 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: This is Akashvani, the news read by Apu Gapak. President Draupadi Murmu today paid floral tributes to former President Fakhruddin Ali Mohammed at Rashtrapati Bhavan on his birth anniversary. Fakhruddin Ali Mohammed served as the fifth president of the country, holding the office from August 24, 1974 until his death on February 11, 1977. He was the first president to die in office. Prime Minister Narendra Modi has significantly reduced the size of his convoy during recent domestic visits while retaining all essential security arrangements mandated under the Special Protection Group SPG protocols. According to sources, the reduction in the number of vehicles in the Prime Minister's convoy was implemented during his recent visits to Gujarat and Assam. The move comes in line with the Prime Minister's 7 appeals to citizens to contribute towards economic resilience by reducing dependence on imported fuel and adopting environmentally sustainable alternatives amidst the West Asia crisis. Sources further added that while the convoy size was reduced, all critical security components continued to remain in place to ensure the Prime Minister's safety. Following Prime Minister Narendra Modi's appeal, Union Home Minister Amit Shah downsized his convoy, reducing it to less than half. The chief ministers of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Delhi have announced measures to reduce the use of official vehicles by ministers, MLAs and public representatives. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has ordered a 50% reduction in the vehicle fleets of the CM, ministers and other officials. Chief Minister of Rajasthan Bhajan Lal Sharma has also emphasized the need to conserve petrol and diesel in the state. The Chief Minister has decided to reduce the number of vehicles in his own convoy and has directed ministers, public representatives and officials to exercise restraint in the use of vehicles. The newly sworn-in government led by Chief Minister Joseph Vijay has proven a majority of 144 MLAs and has won the vote of confidence today. 22 AIADMK MLAs led by Edappadi Palaniswamy have opposed it. 5 MLAs including BJP MLA and PMK remained neutral. DMK and other alliance partners did not participate in the motion and walked out of the assembly. The motion to prove majority was brought by Chief Minister in this assembly. The AIADMK led by SP Velumani supported the government. Veteran political leader and founder of the All India NR Congress R. Rangasamy today took oath as the Chief Minister of Puducherry for the

मीडियम में 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ और साथ ही FM 104 मेगाहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय शाम के 6:10 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम झरोखा। कार्यक्रम झरोखा के अंतर्गत आइए हम आपको अवगत करवाते हैं आज के शेष कार्यक्रम तथा कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से। आइए पहले आज के शेष कार्यक्रमों में अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 6:20 पर सुनेगा दैनिक शेदुलर में ग्यांगर गांव के आमा दोर्जी युटन और साथियों से गुंजक सुम्पा डोलमा संपा लुंडुप बर्शी लमसिल क्यावे जप्तन चंद्रजक तोयपा एक्या और गोवा। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार शाम 7:05 पर सुनेगा अंग्रेजी में समाचार। आज शाम 7:10 पर सुनेगा साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे शाम 7:45 पर। तत्पश्चात 7:50 पर सुनेगा रीजनल न्यूज। आज शाम 7:55 पर आप सुन सकेंगे एक देशभक्ति गीत फिल्म 10 से। आज रात्रि 8 बजे का समय रहेगा आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद पुराने हिंदी फिल्मी नगमे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित रात्रि 8:30 पर सुनेगा स्पोर्ट्स स्कैन। आज रात्रि 8:45 पर सुनेगा समाचार संध्या तथा न्यूज एट 9 आप सुन सकेंगे रात्रि 9 बजे। और आज रात्रि 9:15 पर कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी दी जाएगी। आज रात्रि 9:16 पर आज के सभी प्रसारण समाप्त होंगे। तो श्रोताओं, ये तो थी आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारी। आइए श्रोताओं, अब हम आपको कल यानी 14 मई 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से रूबरू करवाते हैं। रोजाना की तरह हमारा कल का सफा आरंभ होंगे कल दोपहर 2 बजे अंग्रेजी में समाचार के तहत। कल दोपहर 2:15 पर सुनेगा दोपहर समाचार के अंतर्गत हिंदी में समाचार। कल दोपहर 2:30 पर सुनेगा कार्यक्रम वंदना में देवोशीष दास गुप्ता के स्वर में चंद हिंदी भक्ति गीत। कल दोपहर 3 बजे आप आनंद ले सकेंगे कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के तहत बेंग्या हेमंता और ताना तारम तारा की आवाजों में नेशी आधुनिक नगमे। कल दोपहर 3:30 पर सुनेगा साप्ताहिक कार्यक्रम महिला मंच। कल

25 के 50 मिनट पर आप आनंद ले सकेंगे कार्यक्रम गीत मंजरी में हे बेबी फिल्म से सोनू निगम और श्रेया घोषाल की युगल आवाजों में, क्रिश फिल्म से सोनू निगम और श्रेया घोषाल के सुरों में, कभी अलविदा नाकेना फिल्म से सोनू निगम और अलका यादमी की आवाजों में, फना फिल्म से सोनू निगम सुनिधि चौहान आमिर खान और काजल की आवाजों में, अपनी फिल्म से सोनू निगम जयश गांधी और जसवेंद्र निरूला की आवाजों में, प्रेम रतन धनपायो फिल्म से पालक मुच्छल और साथियों की आवाजों में, दुम लगा के हेशा फिल्म से पपून की आवाज में, सुई धागा फिल्म से रोंकिनी गुप्ता के स्वर में, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म से अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में, चंद हिंदी फिल्मी नगमे। कल संध्या 4:30 पर सुनेगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित कल संध्या 4:45 पर सुनेगा हिंदी में समाचार। तत्पश्चात 4:55 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार। कल शाम 5 आप सुन सकेंगे रोजाना की तरह मोनपा कार्यक्रम में लीर नमधर। कल शाम 5:30 पर सुनेगा दैनिक मुख्य सूचना मोनपा में। कल शाम 5:35 पर सुनेगा दिंगदुई समा यानी आधुनिक मोनपा नगमे। इसके अंतर्गत आप आनंद ले सकेंगे दुर्जी के चन जम्बे थुप्तन के संग लेकी सोनम, निमा ड्रमा दुर्जी सेवंग पेमती की और जम्बे और केसंग से चंद नगमे। 6 लेरम से 6:10 पर कार्यक्रम जरोखा। कल शाम 6:20 पर सुनेगा दैनिक शेदन लेरम में ग्यांगों अनिगोनपा के अनि येशी पेमा और साथियों से तेमचोक लामा चेपा। कल शाम 7 सुनेगा हिंदी में समाचार तथा शाम 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। कल शाम 7:10 पर कार्यक्रम आज की कविता के अंतर्गत आप सुन सकेंगे इलाइट इंग्लिश स्कूल तवांग की चौथी कक्षा के छात्र राजवीर भारती से एक कविता। कविता का शीर्षक होगा कोयल। कल शाम 7:12 पर आप सुन सकेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम एक और एक के अंतर्गत पालक मुच्छल के साथ अन्य कलाकारों से चंद हिंदी फिल्मी नगमे। इसके अंतर्गत आप आनंद ले सकेंगे आशिकी 2 फिल्म से पालक मुच्छल और अरिजीत सिंह, प्रेम रतन धनपायो फिल्म से पालक मुच्छल और साथियों, बागी 2 फिल्म से पालक मुच्छल और नवराज हंस, इश्क ने कर्ज किया रे फिल्म से श्री रामा चंद्रा और पालक मुच्छल की आवाजों में, हीरो फिल्म से अमाल मालिक और पालक मुच्छल की आवाजों में, किक फिल्म से मीका सिंह और पालक मुच्छल की आवाज में, और सनम रे फिल्म से अरमान मलिक पालक मुच्छल और अमाल मलिक की आवाजों में चंद नगमे। आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर तथा शाम 7:50 पर रीजनल न्यूज। कल शाम 7:55 पर सुनेगा एक देशभक्ति गीत के अंतर्गत आप सुन सकेंगे लक्ष्य फिल्म से एक देशभक्ति गीत। कल रात्रि 8 आप सुन सकेंगे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद पुराने हिंदी फिल्मी गीत। कल रात्रि 8:30 पर सुनेगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन। कल रात्रि 8:45 पर सुनेगा समाचार संध्या तथा रात्रि 9 आप सुन सकेंगे न्यूज एट 9। कल रात्रि 9:15 पर अगले दिन प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। कल रात्रि 9:16 पर
कल के सभी प्रसारण समाप्त होंगे।

तो श्रोता ये तो थे आज के शेष कार्यक्रम तथा कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। इन्हीं जानकारियों के साथ ही कार्यक्रम जरों का समाप्त होता है। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम सुनेगा मोनपा में। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

Kurwa jise madonga nyama ni ratu

Kuna jage bubanam iram dhadangis.

0: Lakinang stada lungtinggang tawang namye ngodun shindun lerima gyanggar yuk ama doji idensi kristo no kyunchak sumba dolma sambal hundubma parjil lamsa kiwi shabden chendizik tueba yigyanin ngomonum dono sa naombor. Lakinang uddeba lungtinggang tawang tishnubdik manbak lerimba na chazang dudur. Lakinang tsangba nukdutsuze nisongdur. Lakinang dao shuje na hindi ka sikyunin shuje inji ka sikyur lungtinggang deli kakshu sennang sa.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
2: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीस का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की यह पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए एक क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंत्रिमंडल की मंजूरी से देश के करोड़ों किसानों को अपने उत्पाद के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। यह कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53

0: different aspects of strategic partnership between India and South Africa. In Thailand, Open badminton star shuttlers PV Sindhu, Lakshya Sen and Kidambi Srikanth progressed to the pre-quarterfinals of singles events in Bangkok. In women's singles, a two-time Olympic medalist, PV Sindhu defeated Tang Xiao Tong of Chinese Taipei. She will take on Amelie Scholz of Denmark in round of 16 tomorrow. In men's singles, 7-seed Lakshya Sen prevailed over Singapore's Xia Heng Jason Ta. He will square off Chinese Taipei's Su Li Yang. And that is the end of this news bulletin.
1: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार मीडियम में 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता समय शाम के 7:10 हुए हैं और अब प्रस्तुत है फोन पर लिए गए फरमाशीतों का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। इसे संचालित तथा प्रस्तुत करता है दोर्जी डोलमा।

0: दुखी लोगों को अपना सुख और सुखी लोगों को अपना दुख कभी न बताएं, क्योंकि सुखी को दूसरे लोगों का दुख समझ नहीं आता और दुखी को दूसरों का सुख समझ नहीं आता। नमस्कार, मैं हूं आपके दोस्त दर्जी डोलमा। तकनीकी सहयोगी शिखा देका के साथ हम लेकर आए हैं हमारा साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम देखते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम में पहला फोन किस श्रोता से प्राप्त हुए है। हेलो नमस्कार।
1: हेलो नमस्कार
0: जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं अमल बसुमतारी बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी,
0: हाँ जी, अमल बसुमतारी जी बोलिए, आज कौन सी गीत सुनना है?
1: हत्यारा फिल्म का गाना सुनना है मैडम।
0: हाँ जी, हत्यारा फिल्म से कौन सी गीत?
1: ओ सनम तू ले कसम, ये गाना तो सुनना है कुमार सानू की आवाज में।
0: जी जरूर सुनवाएंगे। और अपने दोस्तों के नाम अगर साथ में हो तो जरूर लीजिएगा।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ
0: हाँ जी,
1: मेरे साथ में बैठा है काबुल बसुमतारी और इस गाने को सुनेंगे धेमाजी से बिमल बसुमतारी और सोरायडियो सुनारिया असम से भाईकुन मुंडा, गुलाघाट से रमेश पात्र सुनेंगे और उधर कार्बी आलोंग से सरिया आजम से जोगेंद्र रोंगपे सुनेंगे और हमारे उधर नतेंद्र वर्मा सुनेंगे, केसरी सिंह राजपूत, प्रेम सिंह सरसोदिया सुनेंगे और गजराज सिंह लधी, मंगीलाल चंदेल और अविनाश शैली और रमेश प्रजापति, बहुत सारे दोस्तों के लिए मैं इस गाने को डेडिकेट कर रहा हूँ, साथ में आपको भी मैडम।
0: जी जी, बहुत धन्यवाद। और अब असम में,
1: असम में बारिश हो रहा है मैडम,
0: गर्मी से थोड़ी राहत मिलते होंगे ना? अब तो गर्मी हो गए होंगे।
1: हाँ हाँ, गर्मी से अभी थोड़ी राहत मिल चुका है, कल से बारिश हो रहा है यहाँ पे, रात को भी हुआ था थोड़ा,
0: लेकिन फिर बारिश ज्यादा होने से बाढ़ आने की बहुत संभावना होते
1: है। बारिश तो हमारे लिए दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ पे खेती का काम किया जाता है ना, जो बारिश आता है तो शाही का पट्टी ज्यादा से निकल सकता है और धान लगाने पर भी अच्छे होते हैं।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: पानी कुछ बोरिंग वगैरह यूज करना नहीं पड़ता है,
0: अच्छा
1: पानी से हो जाता है।
0: लेकिन जहाँ पर समतल भूमि है, हाँ जी, जहाँ पर समतल भूमि है वहाँ पर फिर ज्यादा बारिश होने के कारण बाढ़ आते हैं, फिर बहुत सारे समस्याएं आने लगते हैं ना।
1: हमारे जगह में ज्यादा तो नहीं आता है बारिश और हमारे
0: अच्छा,
1: यहाँ पे कोई फ्लड होने का भी चांस नहीं है, सामने में नदी वगैरह ऐसे नहीं है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो अमल जी, चलिए मैं आज के इस कार्यक्रम में आपकी फरमाइश पेश कर रही हूँ और हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।

0: हेलो नमस्कार
1: हेलो आकाशवाणी
0: जी, बिल्कुल आकाशवाणी है। क्या आप लोपसंग तिंदा जी बात कर रहे हैं?
1: जी जी
0: जी तिंदा जी, आपका बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे आकाशवाणी के कार्यक्रम में। और बताइए, आप कैसे हो?
1: मैं ठीक हूँ मैडम।
0: जी जी
1: और
0: जी हाँ जी,
1: सबसे पहले तुमने आकाशवाणी को तरफ से सभी मेरे आवाज के दोस्तों को मैं सलाम करना चाहूँगा।
0: जी, और बताइए, आज

0: फिर आपको कौन से गीत में पेश करवाऊं?
1: फिल्म ये इश्क नहीं आसान जो अनवर साहब ने गाया और गीत के बोल है,
0: हाँ जी,
1: मेरे हिजाब ने मुझे शायर बना दिया।
0: जी जी जी, बहुत ही अच्छी गीत है, ये गीत तो मुझे भी बेहद पसंद है। और आपके साथ कोई दोस्त है आज इस गीत को सुनने के लिए?
1: फिलहाल तो नहीं है, मैं अकेला हूँ।
0: जी जी जी, और तिंदा जी, आज बड़े ही इत्तेफाक से आपके कॉल हमें प्राप्त हुए। मैं आपसे एक बहुत ही विशेष चर्चा आपके साथ करना चाहूंगी। आपको शायद इस बारे में जानकारी जरूर होंगी कि ऑल इंडिया रेडियो, जो कि अब हम इसे आकाशवाणी के नाम से जानते हैं, आकाशवाणी हमारे भारत में शुरुआत किए हुए, अब हम आने वाले 8 जून 2026 को हम 90 साल पूरे करने जा रहे हैं, और आप जो है हमारे आकाशवाणी के एक बहुत ही पुराने लिसनर हैं, और आप हमारे साथ बहुत ही समय से जुड़े हुए हैं कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी के जरिए, और अब फिर नए कार्यक्रम है पुराने हिंदी फिल्मी गीत उस कार्यक्रम में। तो आज इस मौके पर मैं आपसे एक सुझाव जरूर मांगना चाहूंगी। हम जो कार्यक्रम आकाशवाणी से प्रसारित करते हैं आप श्रोताओं के लिए, तो उससे हमारे मौन क्षेत्र के लोगों को कितने फायदे होते हैं, और आपके सबसे ज्यादा पसंदीदा कार्यक्रम कौन सी है?
1: हाँ जी मैडम, सबसे पहले तो मैं सभी आकाशवाणी को 90 साल की पूरे होने पर मुबारकबाद देना चाहूंगा।
0: बहुत धन्यवाद।
1: तो हमारे मौन क्षेत्र में जो आपने जो हमें जो सर्विस दिया, तो इसके लिए मैं सभी आकाशवाणी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।
0: जी,
1: खासकर हमारे आकाशवाणी तवांग को। आकाशवाणी तवांग के साथ मैं लगभग 30 साल से ज्यादा जुड़ा रहा हूँ।
0: जी जी जी,
1: तो उसमें बहुत ही अच्छा अच्छा कार्यक्रम सुनने को मिला हमें। तो उसमें खासकर अपने धरती अपने लोग
0: जी
1: कुंसल कार्यक्रम जो व्हाट्सएप के द्वारा फरमाइशी हिंदी फिल्मी गीत, किसानों के लिए कार्यक्रम और स्वास्थ्य चर्चा नमदर कार्यक्रम, हेलो आकाशवाणी
0: जी
1: और देश विदेशी के समाचार
0: जी,
1: ये सब हमें बहुत ही अच्छा लगा आपका कार्यक्रम से। स्वास्थ्य चर्चा जैसे आपने हमें तवांग डिस्ट्रिक्ट का जो हमारे वहाँ से डॉक्टर आपने बुला के स्वास्थ्य चर्चा में जो आप मिलाया डॉक्टर साहब से, तो ये सब हमें बहुत दूर दूर तक उसका लाभ मिला।
0: जी जी,
1: तो किसानों के लिए जो कार्यक्रम आप दे रहे हैं, तो हमें खेती करने वाले किसानों को बहुत ही लाभ मिला है। नमदर और हेलो आकाशवाणी तो एक लोकप्रिय कार्यक्रम में से एक कार्यक्रम हुआ ये जो।
0: जी जी,
1: तो नमदर जिसने भी हम लोग तक सुनाया, मैं अपने ओर से आकाशवाणी के जरिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा।
0: जी जी जी,
1: तो आपका कार्यक्रम हम बहुत ही दिलचस्पी से सुनता हूँ। जिसके 30 साल के दौरान में मैंने कई फरमाइशी किया था।
0: जी जी,
1: पहले तो ये इंग्लैंड लेटर होता है जो इन्वॉल्व होता है, ये सब के जरिए डाक के द्वारा भेजा जाता था। तो आज देखा जाए तो व्हाट्सएप के जरिए जो हम फरमाइश भेजते हैं, तो उसमें बहुत ही चेंजेस आया तवांग रेडियो स्टेशन में। समाचार अब मोम्पा में प्रस्तुत करता है, हिंदी में करता है, तो ये सब बहुत ही हमें लाभ मिलता है। तो हमेशा तो हम टीवी के सामने बैठकर देख नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है, तो उसके जरिए हम रेडियो को ऑन करके रख के हम कहीं भी कुछ भी काम करके हम रेडियो तो सुन सकते हैं।
0: जी जी जी,
1: तो आजकल देखिए तो आप रेडियो स्टेशन 24 घंटे FM चलाता है, तो FM में बीच बीच में आप समाचार भी सुनने को मिलता है, खेल समाचार भी मिलता है, तो हम मनोरंजन के लिए बहुत ही अच्छा अच्छा गीत भी सुनने को मिलता है। ये तवांग स्टेशन जो है आज से लगभग 51 साल से ज्यादा हो चुका है।
0: हाँ जी,
1: तो इसमें बहुत ही हमें जो लाभ, जैसे कि जो दूर दूर में घर से बहुत दूर बैठकर हम जो कहते हैं ब्रोकपा, तो फौजी भाई ये सब के लिए तो बहुत ही अच्छा टाइम पास के लिए बहुत ही अच्छा हुआ मैडम। क्योंकि बहुत दूर दूर बैठकर अपना घर से बहुत दूर रहकर भी अपना मनोरंजन के लिए गाना सुन सकता है, समाचार सुन सकता है,
0: बिल्कुल
1: बहुत ही अच्छा लगता है हमको ये सब कार्यक्रम के लिए।
0: जी,
1: तो 90 साल पूरा होने पर सभी आकाशवाणी को एक बार फिर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ।
0: जी तेंदा जी, आपका बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप जैसे हमारे पुराने श्रोता जो है हमें इस तरह से सुंदर तरीके से हमें जब सुझाव देते हैं तो हमें बेहद अच्छे लगते हैं, क्योंकि हम जो भी कार्यक्रम यहाँ से प्रस्तुत करते हैं वो शायद आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे कि हम केवल नाम के लिए या फिर कर्तव्य निभाने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि ये जो सारे कार्यक्रम जो है हमारे दिलों से आप श्रोताओं के दिलों तक के लिए होता है। और इस तरह से आप जब इतने सुंदर तरीके से 30 साल के सफर हमारे साथ साझा कर रहे हैं तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तिंदा जी। इसी के साथ मैं आपके फरमाइश पेश कर रही हूँ, और हमारे साथ साथ यूं ही इसी तरह आप निरंतर

0: हेलो जी, नमस्कार।
1: हेलो, नमस्कार।
0: और आप शायद भाईकन मुंडा जी बात कर रहे हैं?
1: जी, मैं भाईकन मुंडा बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट आसाम से।
0: जी
1: मैं
0: जी
1: भी ठीक
0: जी
1: हूँ मैम, और कॉल लगा है, अच्छा लग रहा है।
0: हाँ हाँ हाँ और बताइए, कौन सी गीत आपके लिए आज पेश कर सकते हैं हम?
1: फिल्म का नाम है कृष्ण अवतार, और उसमें गाना है मेरा महबूब मुझसे ऐसे मिला, मेरा महबूब मुझसे ऐसे मिला, ये गाना
0: अच्छा
1: सुनना।
0: जी जी इससे पहले आप तो बड़े अच्छे गाते हैं, कि आप कभी मुंबई नहीं गए?
1: ऐसे ही गुनगुना लेता हूँ, गाना अच्छा लगता है
0: हाँ
1: मैम, गाना सुनना
0: हाँ
1: और गुनगुनाना
0: आपके,
1: अच्छा लगता है।
0: हाँ आवाज अच्छे हैं, सुनकर अच्छा लगा मुझे। आपको मुंबई जाना चाहिए था, है ना? ठीक है जी, हम जरूर ये गीत आपके लिए पेश करेंगे, और अपने दोस्तों के नाम अगर साथ में हो तो।
1: डेडिकेशन करना है मैम दोस्तों के नाम। मेरा अमल बसुमतारी, विमल बसुमतारी, रमेश पत्र, रुन पत्र, बाकी जितेंद्र रंगपी, अंजलि बसुमतारी, और आकाश भाई तावांग सुबह है, सभी नियमित होता सबके लिए, और सचिन तावांग के सभी अनाउंसर्स के लिए।
0: जी, तो क्या इसी के साथ मैं आपकी फरमाइश पेश कर सकती हूँ?
1: जी मैम,
0: जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।

जी हाँ, तो दोस्तों ये था हमारा आज का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। अगर आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो हर बुधवार की सुबह 10 बजे जरूर फोन कीजिएगा। हमारा फोन नंबर है 6033914908। तो दोस्तों इसी के साथ ही अब आपके दोस्त दर्जी डोरमा को तकनीकी सहयोगी शिखा दीक्षा के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं भी आप आनंद ले रहे थे साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। इसे संचालित तथा प्रस्तुत करता थे दोर्जी डोलमा। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित अब से कुछ ही पलों में, यानी शाम 7:45 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार। तत्पश्चात 7:50 पर आप सुन सकेंगे रीजनल न्यूज। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज चरण एक के तहत जिला स्तरीय समीक्षा अभ्यास की शुरुआत करते हुए 4 घंटे की गहन बैठक आयोजित की, जिसमें नवगठित जिलों कामले, लोअर सियांग, पाके केसांग, लेपारादा, शियोमी, कई पान्योर और बिछोम की जमीनी स्थिति तथा कार्यात्मक व्यवस्था का व्यापक आकलन किया गया। सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से बैठक की जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि समीक्षा के दौरान मानव संसाधन की कमी, विभाग स्तरीय रिक्त पदों, प्रशासनिक अवसंरचना, राज्य स्तर पर नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले मुद्दों तथा सुशासन और बेहतर जीवन सेवा सुनिश्चित करने के लिए जिलों की समग्र तैयारी पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि संबंधित जनप्रतिनिधियों, उपायुक्तों तथा विभागाध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण चर्चा भी की गई। ये जिला स्तरीय समीक्षा अभ्यास चरण 4 तक जारी रहेगा, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के सभी जिलों को शामिल किया जाएगा, जिसका उद्देश्य अधिक सशक्त, उत्तरदायी और जन केंद्रित प्रशासन का निर्माण करना है। अरुणाचल प्रदेश राज्य परिवहन सेवा और रेड बस ने आज ई टिकटिंग सेवाओं की शुरुआत के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए, जो अरुणाचल प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस एमओयू पर परिवहन मंत्री ओजिंगता सिंह की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। बैठक का विवरण साझा करते हुए मंत्री ने कहा है कि ये सहयोग यात्रा को अधिक सुगम, कुशल और यात्रियों के अनुकूल बनाने के साथ साथ सेवा वितरण में पारदर्शिता और पहुंच की सुगमता को भी मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि इस एमओयू पर हस्ताक्षर करना स्मार्ट शासन की दिशा में एक और स्मार्ट, डिजिटल रूप से सशक्त अरुणाचल प्रदेश के निर्माण की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। लुंगला सर्कल के अंतर्गत फार्मे गांव में आज आत्मनिर्भर बागवानी योजना तथा ऑयस्टर एवं शिताके मशरूम की व्यवहारिक खेती तकनीकों पर एक सफल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऑयस्टर और शिताके मशरूम की खेती पर आधारित ये व्यवहारिक प्रशिक्षण में किसानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं आर्यवर्धक बागवानी पद्धतियों के प्रति बढ़ती रुचि देखने को मिली। कार्यक्रम में 7 स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों सहित 60 से अधिक किसानों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। बाल श्रम और मजदूरी पर रोक लगाने के उद्देश्य से आज ईस्ट सियांग जिले में श्रम विभाग, पुलिस विभाग और जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त निरीक्षण अभियान का आयोजन किया गया। टीम ने रुकसिन सर्कल के विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम, कॉन्ट्रैक्ट लेबर अधिनियम तथा अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम सहित अन्य संबंधी कानूनों के तहत सघन निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीओ मुख्यालय संजय ताराम ने लोगों से बच्चों को किसी भी प्रकार के श्रम कार्य में शामिल न करने की अपील की। उन्होंने चेतावनी दी कि बार बार नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बाल श्रम अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रवासी श्रमिकों और अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता रहने तथा मजदूरी की चोरी जैसी घटनाओं से तुरंत स्थानीय पुलिस या श्रम हेल्पलाइन में शिकायत करने की भी सलाह जारी की है। निरीक्षण अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रतिष्ठानों और कार्यस्थलों पर बाल अधिकारों तथा अनुचित श्रम प्रथाओं के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है। शोधकर्ताओं ने वेस्ट सियांग जिले के योरदे राबे सुबसे YRS वन्यजीव अभ्यारण्य में कस्तूरी मृग की पहली कैमरा ट्रैप तस्वीर रिकॉर्ड की है। हमारे वन्यजीव विरासत को रिकॉर्ड करने और उसकी रक्षा करने में शामिल शोधकर्ताओं, वन अधिकारी और सभी संबंधित पक्षों के समर्पित प्रयासों की सराहना करते हुए उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस खबर को साझा करते हुए अरुणाचल के ऊंचे पहाड़ी वाले जंगलों की समृद्ध जैव विविधता का एक प्रमाण बताया है। उन्होंने जोर दिया कि ईस्टर्न हिमालय में वन्यजीवों के निरंतर संरक्षण और वैज्ञानिक शोध का कार्य जारी रखना कितना महत्वपूर्ण है। आदि जनजाति के पारंपरिक पूर्वज प्रथाओं और आधारित वार्षिक कोंकू कार्यो महोत्सव का दूसरा संस्करण बुधवार को पासीघाट के निकट तिगरा मुरबुक सामुदायिक भवन में आयोजित किया गया। महोत्सव का मुख्य उद्देश्य पूर्वजों की परंपराओं, जीवंत सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक अनुकूल आजीविका पद्धतियों का संरक्षण करना है, जिन्हें आदि समुदाय की पहचान की जड़ मानी जाती है। इस उत्सव पर का आयोजन आदि संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित सामाजिक संगठन मामक द्वारा सियांग ट्रस्ट NGO तथा तिगरा मुरबुक बानकबांग के सहयोग से किया गया। ऑल तागिन यूथ ऑर्गेनाइजेशन ATYO द्वारा बुधवार को सभी तागिन क्लबाई युवा संगठनों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित कर समाज के कल्याण तथा समग्र विकास के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। बैठक के दौरान सदस्यों ने एकता, सहयोग और युवा संगठनों के बीच बेहतर समन्वय को मजबूत करने से जुड़ी विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोताओं में सुन रहे थे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार तत्पश्चात रीजनल न्यूज। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तावांग केंद्र है। समय शाम के 7:55 हुआ है। आइए आप आनंद लेते हैं एक देशभक्ति गीत फिल्म दसवीं। शंकर महादेवन, उदित नारायण, महालक्ष्मी आयर और दामिनी क्यू की आवाजों में। इस गीत के गीतकार है समीर तथा संगीतकार है शंकर एहसान लॉय।

महादेवन, उदित नारायण, माँ लक्ष्मी आयर और दामिनी क्यू की आवाजों में एक देशभक्ति गीत फिल्म दस से। इस गीत के गीतकार थे समीर तथा संगीतकार थे शंकर एहसान लॉय। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता समय रात्रि के 8 बजे हैं और अब प्रस्तुत है आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद पुराने हिंदी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम का पहला फरमाइश की है लाओ पेगंग बस्ती से आफ है पेमाटाशी नाको दुर्जी सचिन लोफसंग और लोफसंग टेंसुंग। आप सबकी फरमाइश पर आयानत लेते हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म कर से मोहम्मद रफी की आवाज में। इस गीत के गीतकार है आनंद बख्शी तथा संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

शोभापुर बाईपास मीरठ से आप है दिग्दर्शन कविता किरण शक्ति रिया जिया और दर्शन भाई। आप सबके फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला नगमा आइए आनंद लेते हैं क्रिमिनल फिल्म से कुमार सानू और अलका यादमी की युगल आवाजों में। इंदिवर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है MM क्रीम ने।

पद्मा टाल्किस नापा नगर मध्य प्रदेश से आव है। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखिर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरवी शाह, अश्विन शाह, मंगला बहन शाह और राजेंद्र जी शाह। आप सबके फरमाइश पर आयानत लेते हैं शोले फमसी किशोर कुमार और मन्ना दे की युगल आवाजों में। आनंद बख्शी के रचे इस गीत को संगीत से सवारा है आर डी परमन्नी।

श्रोता समय आवाना ले रहे हैं आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद पुराने हिंदी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम को यूं ही आगे बढ़ाते हुए आइए आनंद लेते हैं दादा फिल्म से केजे यशुदास की आवाज में। इस गीत के गीतकार है कुलवंत जैन तथा संगीतकार है उषा खन्ना। इस गीत की फरमाइश की है मंजू का तिल्ला दिल्ली से, आप है कमल बलूजा, मधु बलूजा और सागर बलूजा। सतना मध्य प्रदेश से आप है उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम परामर्श हमें प्राप्त हुआ है नीमनाबाद जिंद हरियाणा से। आप है जसवीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। आप सबकी फरमाइश पर आयन लेते हैं मिस्टर इंडिया फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं में पाना ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी के व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप इस सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए आप सब तक पहुंच सके। इसी के साथ ही आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा यह रूमानी और यादों भरा कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत।

0: समाप्त होता है। श्रोता अब आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन।
1: स्पोर्ट्स स्कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शबाब अनवर। शबाब आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद शक्ति और श्रोताओं को नमस्कार।
1: सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। कल गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सहित कई खिलाड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम वर्ग में रजत और कांस्य पदक अपने नाम किया। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होना है। फिलहाल बारिश के कारण मैच में कुछ देरी आई है और फिलहाल टॉस जारी है। अंक तालिका में देखा जाए तो कोलकाता 8वें स्थान पर है और प्लेऑफ के दौर में बने रहने के लिए कोलकाता के लिए सब कुछ आज के मैच पर निर्भर करेगा। जबकि बेंगलुरु चाहेगी कि आज का मैच जीतें और टेबल में टॉप पर पहुंचा जाए। शबाब, इससे पहले अगर कल के मैच की बात की जाए तो गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन के बड़े अंतर से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। एक रिपोर्ट।
3: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कल हैदराबाद की मजबूत बैटिंग लाइनअप का सामना फॉर्म में चल रहे गुजरात के गेंदबाजों से हुआ। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस ने 5 विकेट खोकर 168 रन बनाए, जिसमें साई सुदर्शन के 44 गेंद में 60 रन और वॉशिंगटन सुंदर के 33 गेंद में 50 रन का बड़ा योगदान रहा। हैदराबाद से प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन ने 2-2 विकेट लिए। आईपीएल में लगातार 200 का आंकड़ा पार कर रही हैदराबाद के लिए ये लक्ष्य बेहद आसान नजर आ रहा था, लेकिन गुजरात के मजबूत गेंदबाजी क्रम के आगे SRS के साथ बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छुपाए और पूरी टीम 15 ओवर पूरे होने से पहले ही 86 रन पर आउट हो गई। कप्तान पैट कमिंस ने सर्वाधिक 19 रन जोड़े, जबकि गुजरात की तरफ से कगिसो रबाडा और जेसन होल्डर ने 3-3 विकेट निकाले, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट तथा मोहम्मद सिराज और राशिद खान ने किफायती गेंदबाजी करते हुए 1-1 विकेट निकाला। इस जीत के बाद गुजरात टाइटंस 12 मैच में 8 जीत के साथ अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है, जबकि हैदराबाद 12 मुकाबलों में 5वीं हार के बाद तीसरे पायदान पर है। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: कोई टीम क्या सोच सकती है कि हैदराबाद जैसे बैटिंग लाइनअप जो लगातार 200 की छड़ी लगा देते हैं बैक टू बैक मैचेस में, उनको हम 80-90 के स्कोर पे रोक दें और मैच उतने ही अंतर से जीतें।
2: और इसका एक रीजन भी है। देखिए, जीटी एक ऐसी टीम है जो एक कंप्लीट क्रिकेट टीम है। अगर देखा जाए तो जिस तरह के खिलाड़ी उनके टीम में हैं, ऑलराउंडर, बॉलर, बैटर्स, अगर आप किसी भी फॉर्मेट में उतार दें तो ये टीम आगे बढ़ सकती है, जीत सकती है। ये टीम टेस्ट मैच की भी टीम है, यही टीम T20 की भी है, यही टीम ODI की भी है, जिस तरह के खिलाड़ी हैं और जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही थी। साई सुदर्शन बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे, आपने देखा ही होगा, स्ट्राइक रेट भी बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन जिस तरह से वो अगर हम जीटी की बल्लेबाजी की बात करें तो जिस तरह से वो आगे ले करके गए, फिर उसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने उनका साथ दिया, रन्स बोर्ड पर बहुत ज्यादा नहीं था, यहां तो 225 और 30 भी सेफ नहीं है इस T20 फॉर्मेट, इस आईपीएल में भी देखा। लेकिन अगर आपकी गेंदबाजी उतनी संतुलित है, रबाडा और सिराज ने शुरुआत में क्या शानदार गेंदबाजी की और उसके बाद फील्डिंग भी आपकी अच्छी है, सब कुछ अगर ठीक ठाक है तो फिर आप मैच जरूर जीतेंगे, भले ही आपकी जमा पूंजी कम हो। अगर देखा जाए तो ज्यादा स्कोर था नहीं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की गेंदबाजी है और जिस तरह का प्रदर्शन उनके फील्डरों ने किया है, राशिद खान जैसे बॉलर, एक कंप्लीट क्रिकेट टीम इस आईपीएल में अगर मेरे हिसाब से अगर कोई है तो वो गुजरात टाइटंस है। और मैं फिर से कहूंगा ये बात कि इस टीम को आप किसी भी फॉर्मेट में उतार दीजिए, ये इसी तरह जीत हासिल करेगी। ये मौजूदा टीम सिर्फ T20 की नहीं है, इसमें जो खिलाड़ी शामिल हैं वो टेस्ट के भी दक्ष खिलाड़ी हैं, ODI के भी हैं और T20 के भी हैं। तो अगर ये टीम आगे बढ़ी है, इस समय नंबर 1 है, आज के मैच के बाद क्या होगा ये तो अभी समय बताएगा, चूंकि RCB पीछे है उनके, तो गुजरात टाइटंस डिजर्व करती है निश्चित रूप से। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि चैंपियनशिप का खिताब वही जीतेगी, लेकिन इतना करीब पहुंच गई है, बहुत बड़ी बात है
1: जी। बिल्कुल,
2: इससे पहले किसी ने शायद सोचा नहीं होगा जीटी के बारे में कि गुजरात टाइटंस की टीम इस तरह से ऊपर चली जाएगी और टेबल टॉपर होगी
1: जी। बिल्कुल, शायद अनुमान नहीं लगाया होगा।

0: और ये टीम ऐसी टीम भी है जिसने आईपीएल की शुरुआत से लेकर कल तक जब उसने अपना आखिरी मुकाबला खेला, इस टीम ने लगातार अपनी गलतियों पे काम किया, जहां पे टीम थोड़ा सा विफल हो रही थी, पीछे रह रही थी, उन चीजों को सुधारा है। अगर आज के मैच की बात की जाए शबाब,
1: तो एक बात मैं सिर्फ ऐड करना चाहूंगा, आशीष नेहरा का नाम बहुत कम लिया जाता है। एक ऐसे कोच हैं जिनकी सेवा प्राप्त है, आपने उस तरह का कोच सिर्फ फुटबॉल में ही देखा होगा।
0: जी बिल्कुल।
1: तो आशीष नेहरा की जो मेहनत है और जिस तरह से वो समर्पित रहते हैं और हर समय लाइन पर खड़े रहते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको क्रेडिट कम दिया जाता है और टीम को क्रेडिट ज्यादा जा रहा है। आशीष नेहरा ने इस टीम को काफी आगे बढ़ाया है, निश्चित रूप से।
0: जी बिल्कुल, आगे बढ़ाया है। और कोचिंग का एक नया फॉर्मेट
1: जी क्रिकेट में,
0: क्रिकेट में देखा जाए तो आशीष नेहरा स्कूल ऑफ कोचिंग जो है ये
1: बिल्कुल
0: लगातार प्लेयर को मैसेज पहुंचाना, और सिर्फ ये नहीं कि आपको तेज खेलना है, कैसे खेलना है, कहां मौके बन सकते हैं। आज के मैच की बात की जाए शबाब, तो कोलकाता है, कोलकाता के लिए ये मैच किसी डू और डाई से कम नहीं है कि आप करिए अन्यथा आप बाहर जाइए। और बेंगलुरु है तो क्या कह सकते, क्योंकि बारिश हो चुकी है, मैच ऑलरेडी एक डेढ़ घंटे देर से शुरू होगा, ड्यू फैक्टर हो या ना हो, लेकिन एक धीमापन आपको मैदान में देखने को मिलेगा बारिश के कारण।
1: या थोड़ा आउटफील्ड तो धीमा हो ही जाता है, इसके बाद रन जिस तरह से चौके आप लगाते हैं, हालांकि आप ऊपर से अगर खेले T20 फॉर्मेट है तो फिर उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोशिश इसी बात की जाएगी। लेकिन यहां रायपुर में थोड़ा सा गेंद धीमी आती है बल्ले पर, थोड़ी सी परेशानी है, रन बनाना उतना आसान होगा नहीं। और रही बात केकेआर की, आपने कही इनके लिए अगर आगे बढ़ना है तो सभी मैच जीतने पड़ेंगे, आज अगर हारे तो यहीं पर इनकी सेवा समाप्त समझी जाएगी। क्योंकि अगर प्रतिशत की बात करें तो आज का मैच जीतने के बाद आरसीबी का प्लेऑफ में जाना 93% पक्का, और अगर ये हारे तो इनकी आशा जो है उम्मीद सिर्फ 2% रह जाएगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डू और डाई तो केकेआर के लिए ही है।
0: जी बिल्कुल, डू और डाई होगा, और टीम चाहेगी कि अपनी उम्मीदों को आगे के लिए बचा के
1: इस तरह से लगातार जो जीत हासिल की है, जो वापसी की है, वो निश्चित रूप से उसके दो खिलाड़ी खास करके दूसरे फेस में जिस तरह से पलटे हैं, गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती और बल्लेबाजी में जिस तरह से रिंकू सिंह ने फिर से अपना फॉर्म हासिल किया है, तो वो चीज अगर आज देखने को मिली तो फिर मजा आ जाएगा।
0: जी बिल्कुल, हो सकता है कि भले बारिश के कारण थोड़ा सा व्यवधान आया हो, लेकिन दर्शकों के लिए शायद बहुत सारा मनोरंजन इस मैच में भी
1: ओवर्स नहीं कटे हैं, पूरे ओवर्स खेले जाएंगे।
0: पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाल, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। सुनते हैं आज खेले गए मैचों का हाल।
2: थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में आज भारत का दिन मिला जुला साबित हुआ। महिला सिंगल्स में दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग सिउ तोंग को 21-9, 21-12 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, जबकि मालविका ने कनाडा की वेन यू झांग को 13-21, 26-24, 21-13 से और देविका ने जापान की नात्सुकी निदाइरा को 21-19, 13-21, 21-15 से हराया। पुरुष सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत ने सिंगापुर के लोह किन यू को 21-14, 21-15 और लक्ष्य सेन ने सिंगापुर के जिया हेंग जेसन तेह को 21-16, 21-17 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं अच्छे फॉर्म में चल रहे आयुष शेट्टी को हार का सामना करना पड़ा, जबकि सिंगल्स में ही युवा थारून मन्नेपल्ली, उन्नति हुडा, तन्वी शर्मा, ईशा रानी बरुआ और अनमोल खरब भी हार कर बाहर हो गयी। उधर मिक्स डबल्स में भारत की तीनों जोड़ियों का अभियान भी पहले ही दौर में हार के साथ समाप्त हो गया। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: एक मिला जुला दिन कह सकते हैं आज का, जहां आयुष के लिए शायद थोड़ा सा बुरा लगा होगा, लेकिन पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत का जीतना काफी ठंडक देने वाला है।
1: जी बिल्कुल, लक्ष्य सेन तो खैर निरंतरता के साथ अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, पीवी सिंधु ने जिस तरह का खेल दिखाया है, तो उनका फिटनेस का मसला था उनके साथ, उनका खेल देख करके यकीनी तौर पर बहुत अच्छा लगा। निश्चित रूप से आपको याद होगा कि 2024 का जो सैयद मोदी टूर्नामेंट था, उसके बाद से उन्होंने कोई खिताब जीता भी नहीं है, तो काफी गैप हो गया है। और जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की है, जिस तरह का फिटनेस दिखाया, फुटवर्क दिखाया अपना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टूर्नामेंट में काफी आगे जाने वाली है। और फिर ये थाईलैंड ओपन एक ऐसा टूर्नामेंट है कि मोस्टली भारत के जो खिलाड़ी हैं वो इस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर चुके हैं, तो और BWF का जो ये 500 कैटेगरी का जो ये टूर्नामेंट होता है, तो उसमें कई खिताब भारत के नाम पहले से ही है, भारतीय खिलाड़ियों के नाम, तो इसमें भी मिली जुली शुरुआत हुई है। कुछ अच्छे खिलाड़ी जिनके बारे में आपने बताया कि उनका सफर बहुत जल्दी समाप्त हो गया है, थोड़ी सी चिंता की बात है, लेकिन प्रमुख खिलाड़ी पहले दौर से ही रेस में है।
0: जी बिल्कुल, रेस में है, और उम्मीद होगी कि भारत के लिए, भारत की सबसे अनुभवी बैडमिंटन खिलाड़ी जो वर्तमान में है पीवी सिंधु, कुछ अच्छे प्रदर्शन के साथ।
1: क्या जबरदस्त शुरुआत की है उन्होंने, क्या जबरदस्त, यानी कि जिस समय ओलंपिक में वो खेलती थी वो वाली सिंधु देखने को मिली है।

0: बहुत जबरदस्त वापसी हो। मुझे ऐसा लगता है कि वो 2024 का जो फाइनल सैयद मोदी का, वहां से जो उन्होंने छोड़ा है वहीं से फिर पकड़ा है, और ये मोमेंटम अगर बरकरार रहा तो क्या कहना।
1: जी बिल्कुल, ये मोमेंटम एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ तक देखने को मिलता है तो बिल्कुल ये खिलाड़ी भारत के लिए कुछ और पदक और खिताब झटकते हुए नजर आएगी। गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने आज 53 किलोग्राम वर्ग में रजत और कांस्य पदक अपने नाम किया। ज्ञानेश्वरी ने स्नैच वर्ग में रजत पदक जीता, बल्कि और इसी स्पर्धा में कुल 194 किलो का वजन उठा करके कांस्य पदक भी अपने नाम किया।

0: गुजरात मेजबानी कर रहा है, पहले दिन कोमल कोहर ने एक पदक भारत के लिए जीता था, उसके बाद आज ये पदक आया है, तो भारोत्तोलन खिलाड़ी भी लगातार मेडल्स और भार उठाते हुए नजर आ रहे हैं।
1: हाँ, थोड़ा सा उम्मीद से कम है, लेकिन कुल मिलाकर एक मेजबान होने के नाते कहा जाएगा कि अच्छा प्रदर्शन। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस तरह के मुकाबले आप देख रहे हैं, एशियन चैंपियनशिप जितने भी खेलों जो ओलंपिक गेम्स हैं उसकी लगातार भारत को मेजबानी मिल रही है और ये अच्छी बात है। हमने पिछले साल भी कई मुकाबले इस तरह के एशियन चैंपियनशिप भारत में आयोजित होते हुए देखी थी जिसमें मुक्केबाजी भी शामिल था, और तो ये अच्छी बात है कि भारत एथलीटों को अपने ही दर्शकों के सामने अपने ही एरिना में खेलने का मौका मिल रहा है, ये एक महत्वपूर्ण बात है।
0: जी बिल्कुल, और खासकर ऐसे वर्ष में जब आपको एशियन गेम्स खेलने हो तो तमाम
1: सारी तैयारी उसी की है। सबसे पहले एशियन गेम्स पे ग्लासगो, तो तैयारी उसी की है, और उसमें जिस तरह के जूनियर खिलाड़ियों के एक पौध तैयार की गई है कोच की तरफ से, तो आप देखेंगे कि ये खिलाड़ी जिनकी चर्चा आज हम कर रहे हैं, तो आगे जो सीनियर स्तर के जो मुकाबले होंगे उसमें कई नाम आपको भारत के लिए पदक जीतते हुए नजर आएंगे।
0: जी बिल्कुल, आपने नई पौध की बात की और पदक जीतने की बात की, इसी कड़ी में इस समय ताशकंद में जो एशियन अंडर 15 अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप चल रही है, आज उसके अंडर 15 मुकाबलों के फाइनल खेले जाने हैं, जहां पे 15 भारतीय खिलाड़ी जो हैं स्वर्ण पदक के लिए अपना दमखम आजमाते हुए नजर आ रहे हैं, तो नजरें वहां पर भी होंगी कि भारत कितने सोनों के साथ कितने स्वर्ण पदक के साथ वापस लौटता है अंडर 15 कैटेगरी में।
1: ये अंडर 15 और फिर अंडर 17 अगर दोनों मिला दें तो 15 में तो सबसे अच्छा प्रदर्शन है दोनों वर्ग में भारत की तरफ से हुआ है, और देखा जाए तो पुरुष वर्ग में अगर देखें तो लक्ष्य जरूर पहुंचे फाइनल में, जो तीन खिलाड़ी बाहर हुए सेमीफाइनल उनमें से एक मुकाबला आपने देखा होगा नमन का जो कि 70 किलोग्राम वर्ग में था, उसमें बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। जो चीज चाहिए बॉक्सिंग में, दो चीजें खास होती हैं, एक तो आपका मुक्का और दूसरे आपका फुटवर्क, तो नमन में ये दोनों चीज लक्ष्य की तरह ही देखने को मिली, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया और 2-3 से वो ये मुकाबला ये बाउट हार गए, वरना ये खिलाड़ी भी भविष्य में काफी अच्छा प्रदर्शन करने वाला है मुक्केबाजी रिंग में भारत के लिए।
0: जी बिल्कुल, आपके 15 से 17 वर्ष के खिलाड़ी जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का प्रदर्शन करते हैं तो देश को कुछ नई उम्मीदें और नई किरण नजर आती है। तीसरी राष्ट्रीय डबल्स स्क्वाश चैंपियनशिप में तमिलनाडु के गुहान सेंथिल कुमार और संदेश पीआर की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। इस जोड़ी ने पहले दौर में नमन सुराना और प्रणव अग्रवाल को 11-1 11-2 से हराया, तो बड़े अंतर से एक जीत दर्ज करते हुए नेशनल कंपटीशन में। और हांगकांग में 28 मई से शुरू होने वाली एशिया अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए लंबी कूद के एथलीट शहनवाज खान को 48 सदस्यीय भारतीय टीम में शामिल किया गया है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने घरेलू प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर बुधवार को टीम का चयन किया। शहनवाज का नाम अंडर 20 प्रतियोगिता में 8.23 मीटर का रिकॉर्ड भी दर्ज है, और मोहम्मद अशफाक 400 मीटर रिले में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे, जबकि नितिन गुप्ता 5000 मीटर की रेस दौड़ते हुए नजर आएंगे, और पूजा ऊंची कूद में इस महाद्वीपीय अंडर 20 प्रतियोगिता में भारतीय टीम के कुछ प्रमुख खिलाड़ियों में हैं। और एथलेटिक्स की बात है तो इस महीने के आखिरी में हो सकता है कि जैवलिन में वापस भारत कुछ और जोहर दिखाता हुआ नजर आए, डायमंड लीग इंतजार कर रही है।
1: जी हाँ बिल्कुल, नीरज चोपड़ा हालांकि इस बार कोई नया खिलाड़ी आपके सामने भारत टीम में आएगा, लेकिन फिर भी इस मुकाबले पर तो अपना आधिपत्य भारत ने जमा रखा ही है, और जिस तरह से आप शहनवाज की बात आपने की, एक उत्तर प्रदेश का उभरता हुआ तेजी से उभरता हुआ ये खिलाड़ी है 8.23, और सबसे कम उम्र में 8 मीटर की छलांग कूद करने वाला ये बहुत कम ऐसे एथलीट भारत में है, तो इन पर भी नजर रखनी पड़ेगी आगे देखिए क्या होता है।
0: इन खिलाड़ियों पर नजर रहेगी,
1: चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट तो ही है।
0: जी बिल्कुल, इन खिलाड़ियों पर नजर रहेगी और इनकी उपलब्धियों पर। श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, शबाब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया, देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया, भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों

0: की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला, आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए, और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से, और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी, इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बैंकिंग के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई इस मामले में शुरुआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और

0: अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
1: During the visit,
2: यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
1: People to people connect.
0: श्री जॉर्ज ने बताया कि 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
1: The visit to the 4 European countries.
2: 4 यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
1: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
0: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था अब वापस लाई जा रही है।
3: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉ शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन

0: इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
1: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
2: आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड।
0: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95 रुपए और 70 पैसे पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
0: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देशभर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet increases minimum support prices MSP of 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Cabinet also gives nod for promotion of surface coal and lignite gasification projects worth 37,500 crore rupees. CBI arrests 5 persons in connection with NEET UG 2026 paper leak case. Raids continue in several states. Prime Minister Narendra Modi reduces his convoy size, prompting BJP chief ministers and other leaders to adopt austerity measures.

और कल शाम 5:35 पर सुनेगा तंग बुक समा और कल शाम 7:12 पर आप आना ले सकेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम एक और अनेक। तो श्रोताओं ये तो थे कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ कार्यक्रमों की संक्षिप्त सूचना। अब समय हो चला आप श्रोताओं से विदा लेने का। हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे कल दोपहर 2 बजे अंग्रेजी में समाचार के तहत। तब तक के लिए कार्यक्रम सहायक श्री तंजन दोर्जी, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित तकनीकी सहायक